ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: No, we don't have that part.
1: Have you tried down the road?
2: We can get it in, but it won't be for a few days.
3: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
4: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
5: गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया
6: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना
5: चाचा केड़ा चाचा
6: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला सिर्फ 2 पौंड ना कान सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
5: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
6: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935
7: ए गीत जुड़िया है घरों बार रहिंदे एक आम इंसान दे नाल ओदे बचपन नाल ओदी मां नाल भैण नाल नानी नाल ते ओदियां बचपन दियां खेडां जिवें आटे दी चिड़ी ते हुण जदों बाहर आ गया कल्ला आटा गुनदा ते याद करदा उस आटे दी चिड़ी नूं जिहड़ी कदे ओदी मां

काफी सोचता था मम्मी दे बारे, बाला और मोहम्मद पाजी दे बारे, पर सबसे ज्यादा रूपा दे बारे।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: दिस अक्टूबर बॉलीवुड मीट्स भंगड़ा इन मैनचेस्टर। In-house Productions presents Bollywood Meets Bhangra 4, featuring Dutch sensation Jenna Jia performing live. Enjoy Bollywood, Bhangra, Hip Hop, Afro and R&B, plus DJs, dancers and dhol players. Friday the 23rd of October from 9 PM till late at Area, 50 Sackville Street, Manchester. Entry is free. Photo ID required. For information, call 0775-3363-926.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप किसी खास तकरीब पर एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
3: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
2: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
3: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
2: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

0: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-0043 पर कॉल करें।
1: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.
2: A classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: show today. Until next time, goodbye and God bless.
1: सासरियाकाल जी.
2: सासरियाकाल जी. सासरियाकाल.
1: ऐ मेरी बेटी है. ते ऐ मेरे हस्बैंड ने.
3: हाँ मैं ही है.
1: तुसी चुप करो जी. मैनू गल करन दियो. हाँ जी मैं की कह रही सी बाजी. वेरी फ्रेंकली गल कर रही है तुहाडे नाल.
2: हाँ जी.
1: मेरी बेटी ने 85 मुंडे देख ले ने आज तक.
4: Dad, what's 85?
2: Oh, 85.
4: 85? Bloody hell, she's seen enough boys. Dad, I ain't gonna marry this.
2: Oh, chop kar.
1: Par ik vi pasand nahi aaya munda.
2: Kade nahi aaya?
1: Oh na, ik munda te Australia to vi aaya si jahaj vich baith ke.
2: Haan ji.
1: Onu te hawa ch uda ditta si assi.
2: Achha ji?
1: Haan ji. Ik munda Leeds to vi aaya si Ferrari vich baith ke.
2: Haan.
1: Te oh na, इन्नी सोहनी गड्डी सी सारा लंदन देख के हैरान हो गया सी के इन्नी सोहनी गड्डी विच मुंडा आया वो कितना सोहना होगा. पर जिन्नी तेज वो फरारी च आया सी उन्ना ही तेज असी उन्हूं दड़ा भी दिता सी.
2: अच्छा?
1: देखो जी मेरी बेटी ते हैगी है 24 कैरेट गोल्ड. वैसे ना मेनू ना जवानी विच सारे हेमा मालिनी कहंदे हुंदे सी.
5: मेनू धर्मिंदर.
1: मैं कहनी तुसी चुप करो मेनू गल करन दियो.
2: ए तो पहला जांदी अपने हस्बैंड दी.
1: हां जी वैसे ओदा साडा रिश्ता भी हैगा मालिनी खानदान नाल थोड़ा बहुता.
2: अच्छा जी.
1: पर तुसी मेरी गल एक सुन लो प्लीज. मैं तुहानू बहुत ही फ्रेंकली कह रही हां कि मेरी बेटी हैगी है बहुत ही सोहनी खूबसूरत कुड़ी ते मेनू एदे वास्ते मुंडा चाहिदा आ उच्चा लंबा बहुत ही सोहना होवे ਜਿਵੇਂ ਐਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ. ਹਾਂਜੀ.
4: ਡੈਡ ਦਿਸ ਵੂਮਨ ਡਸਨਟ ਸ਼ਟ ਅਪ.
2: ਚੁੱਪ ਕਰ.
1: ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜੋਰਾ ਜਰਬੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ.
4: ਰਾਈਟ ਦੈਟਸ ਇਟ. ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੋਲੇ ਲੈਣ ਆਏ ਆ?
1: ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ? ਇਹ ਵੇ ਐਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਮੁੰਡਾ ਏ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ. ਓਹੋ ਐ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਤੇ 86 ਹੋ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ. ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ.

0: you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स
3: 24 hours a day. Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

0: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
1: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London, with even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

0: No, sorry, mate.
1: No, we don't have that part.
2: Have you tried down the road?
3: We can get it in, but it won't be for a few days.
4: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
5: गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां ही कसी गईं पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
6: ओहो ते तुसां चाचे कोल जाओ ना।
5: चाचा केड़ा चाचा?
6: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्नाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्के नती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसां पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
5: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
6: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: दिस अक्टूबर बॉलीवुड मीट्स भंगड़ा इन मैनचेस्टर। इन हाउस प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स बॉलीवुड मीट्स भंगड़ा 4 फीचरिंग डच सेंसेशन जेना जिया परफॉर्मिंग लाइव। Enjoy Bollywood, Bhangra, Hip Hop, Afro and R&B, plus DJs, dancers and dhol players. Friday the 23rd of October, from 9 PM till late, at Area, 50 Sackville Street, Manchester. Entry is free. Photo ID required. For information, call 0775-3363-926. Official Radio Partner.

0: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
1: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें

हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम ब्रैडफोर्ड और इसके गिर्द नवा में। इसके साथ साथ अगर आप हमें दुनिया के किसी और हिस्से में सुन रहे हैं तो उसके मुताबिक हम आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अगर आप इंडिया में सुन रहे हैं तो आपको हम कहेंगे आपका स्वागत करते हैं हम, स्वागत। इसके साथ साथ पाकिस्तान में सुन रहे हैं तो आपको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन इंग्लिस्तान में तो आप सुन ही रहे हैं। मतलब आप इंग्लिस्तान में अगर हैं और हमारा रेडियो स्टेशन सनराइज रेडियो नहीं सुन रहे तो फिर और क्या सुन रहे हैं? घर वालों की बातें सुन रहे हैं या अपनी वाइफ की बातें सुन रहे हैं या वाइफ अपने हस्बैंड की बातें सुन रही हैं? बहरहाल आप सारी बातों को एक साइड पर रख दीजिए और सुनिए सनराइज रेडियो 103.2 FM, इसकी फ्रिक्वेंसी है। इसके साथ साथ अगर आप हमें इंग्लैंड में सुन रहे हैं तो ऑफकोर्स हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, आपके शब रोज कैसे गुजर रहे हैं, आपका दिन रात कैसा, ये दिन रात एक किया हुआ है या दिन और रात अलग-अलग से हैं? कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि उनका दिन और रात का पता ही नहीं चलता। वो या तो रात को काम कर रहे होते हैं तो दिन को घर वापस जा रहे होते हैं, और अगर दिन में काम कर रहे होते हैं तो रात को घर वापस जा रहे होते हैं। बहरहाल आप किस कैटेगरी से हैं, आपका ताल्लुक किस कैटेगरी से है ये हमें ज़रूर बताएगा। स्टूडियो का नंबर हमेशा की तरह आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूँगा। आप हमें अपने टेलीविज़न पर भी सुन सकते हैं, आप हमें रेडियो प्लेयर पर सुन सकते हैं, ऑनलाइन ऑफकोर्स सुन सकते हैं sunriseradio.fm पर, और इसके साथ साथ आप अपने Amazon Kindle Fire पे भी सुन सकते हैं सनराइज रेडियो की नशरियात। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर तकरीबन 3 घंटे, नेक्स्ट आइंदा जो 3 घंटे हैं हमारा आपका साथ रहेगा। और तकरीबन मैंने इसलिए कहा है कि यू नो इंसान है, आगे पीछे हो सकते हैं हम, मतलब कुछ भी हो सकता है। बहरहाल ब्रैडफोर्ड और इसके गिरदनवा में साथ साथ जो हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले, हमारे सुनने वाले हमें मैनचेस्टर में सुन रहे हैं तो आप हमें DAB के ज़रिए सुन रहे हैं, और लीड्स में भी DAB के ज़रिए सुन रहे हैं। इसके साथ साथ ओल्डम, रॉसडेल, ईस्ट लंकशायर और मिल्टन किंग्स, वाओ, मिल्टन किंग्स में आप हमें सुन पा रहे हैं DAB डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हम सिर्फ 24 घंटे नहीं, साल के 365 दिन नहीं, बल्कि हमारा और आपका साथ उम्र भर का है। स्टे ट्यून एंड स्टिक अराउंड।

0: you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
1: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा। इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

ओके सो बात यह है कि गाने तो हम सुनते रहते हैं, इसके साथ साथ हम मूवीज भी देखते रहते हैं, मूवीज के साथ साथ हम ड्रामे भी देखते रहते हैं। मतलब क्या क्या इंसान देखे, सारा दिन मोबाइल भी देखते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो तो हम करते हैं बातें, बातें सुनने के लिए हम रेडियो ऑन करते हैं। बाज़ औक़ात हम बहुत बोर हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार रेडियो पे क्या चल रहा है, या तो खबरें या तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और आपको हर घंटे के बाद जो हमारा खबरनामा मिलता है उसमें आपको खबरें मिलती हैं, ट्रैफिक की अपडेट मिलती हैं, जिससे आप बाखबर रहते हैं कि दुनिया में और आपके इर्द गिर्द, आपके शहर में, आपके इलाके में क्या क्या हो रहा है। इससे सनराइज़ आपको अपडेट रखता है। इसके साथ साथ आपको गाने तो हम सुनाएंगे, लेकिन एक चीज़ हमारे शो में आज नहीं होने वाली है, वो ये है कि फरमाइशी गाने मैं को नहीं चलाने। अगर आप फरमाइश करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए मुझे कॉल मत कीजिएगा, लेकिन आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हाज़िर हैं। आप कभी भी हमसे बात करें, और बात करने के लिए नंबर तो आपको पता ही है, और हमारे स्टूडियो का नंबर है 01274306666, यानी कि 4 दफ़ा 6, मतलब 01274306666। आप हमें स्टूडियो में अभी कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि व्हाट आर यू अप टू।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dampukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chooza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274 733 732. Jinnah Restaurant. Tradition, taste, and something new.
3: Sunrise and music.
4: मुझे याद है कि एक जमाना हुआ करता था कि जब बड़ा मायूब समझा जाता था कि कोई हमें फॉलो कर रहा है, कोई आपका ताकुब कर रहा है। आजकल हर दूसरा बंदा दूसरे बंदे को यही कहता है कि आप मुझे फॉलो करें। आजकल हम खुद किसी को दावत दे रहे होते हैं कि भाई हमें फॉलो करें, मतलब मैं जहां जहां भी जाऊं, मैं जो कुछ भी करूं, मैं जो कुछ भी खाऊं, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। मतलब आजकल की जिंदगी इस तरह की हो चुकी है। बहरहाल आप भी हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, और इसके साथ साथ हमेशा की तरह आप हमें सुन पा रहे हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू भी, sunriseradio.fm।

भाई जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। आप हमें कॉल करें 01274 30666 पर। अच्छा, ये हमारा एक कह लीजिए कि ये देसियों का एक मामला है कि हम लोग ईमेल्स और टेक्स्ट वगैरह पर बहुत कम यकीन रखते हैं। हम अगर ईमेल कर भी दें किसी को गलती से, या फिर उनको हम मैसेज कर दें टेक्स्ट मैसेज, एक तो ये धड़का सा लगा रहता है कि टेक्स्ट मैसेज अगर आपने किया है तो वो सीन हो गया है या नहीं सीन हुआ। अगर सीन हो गया है तो वो बंदा रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। और इसके साथ साथ ईमेल्स पे तो खैर ये तरीका नहीं है कि आप चेक कर सकें कि किसी ने आपकी ईमेल पढ़ ली है या नहीं पढ़ ली। बहरहाल होता यह है कि हम लोग ईमेल्स पे और टेक्स्ट पर ये इन चीज़ों पे बहुत कम बिलीव करते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी को ईमेल किया तो वो ईमेल कहीं पर गवास गई है, मतलब कहीं पे खो गई है, उसका कोई नामो निशान नहीं है कि अगले बंदे को पहुंच गई है या उसको रिस्पॉन्ड करने में कितना वक्त लगेगा। लिहाजा हम बिलीव करते हैं फ़ोन कॉल्स पर। हम कहते हैं कि यार फ़ोन करो यार, क्या है यार, मतलब इसमें से पहले चेक करो, मतलब डायरेक्ट बात जब तक बंदे से ना हो हमें तसल्ली नहीं होती। तो बहरहाल आप अपनी तसल्ली रखिए और हमें कॉल कीजिए 01274 30666 पर। आपकी फरमाइशें बहरहाल हम नहीं ले रहे, लेकिन अगर आपकी कोई ये फरमाइश है कि आपने मेरे थ्रू किसी को आई लव यू कहना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और उनका नाम बता सकते हैं। मैं आपका जो पैगाम है, मोहब्बतों भरा पैगाम, वो पूरी ईमानदारी से थर्ड पार्टी तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।

कॉल्स का बेहद बेहद बेहद बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। लाइंस बहुत बिजी हैं, अगर आपकी कॉल नहीं मिल पा रही तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बहुत माजरा चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि आज जो आपकी कॉल्स आ रही हैं वो इतनी भरपूर आ रही हैं कि उसमें मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यकीन कीजिए, ये जो एक शो करना है ना, ये जो एक रेडियो का शो करना है, ये ऐसा है कि जैसे आप जहाज़ चला रहे हैं। मतलब आपको हर चीज़ के ऊपर, आप इतने सारे बटन आपके सामने होते हैं, आपको हर बटन के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है कि अच्छा कोई बटन आगे पीछे ना हो जाए, किसी टाइमिंग गलत ना हो जाए। तो बहरहाल आपकी कॉल्स का शुक्रिया। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी कॉल्स सबकी जो हैं वो मैं रिसीव करूंगा और आपसे बात भी होगी। अगर आपको दोबारा डायल करना पड़ रहा है तो उसके लिए माजरत, और अगर आप दोबारा डायल करते करते नहीं थक रहे तो आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

अच्छा जी, कहते हैं कि मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती, मोहब्बत की सिर्फ एक जुबान होती है, और वो जुबान होती है कि किसी भी जुबान में अगर आप मोहब्बत करना चाहते हैं तो उसको प्यार से बोला जाए तो वही मोहब्बत की जुबान होती है। मोहब्बत की जुबान वही होती है जो आपकी मादरी जुबान होती है। अगर आप अपनी मादरी जुबान से प्यार नहीं करते तो आप प्यार कैसे कर सकते हैं? तो आपकी मादरी जुबान चाहे पंजाबी है, उर्दू है, हिंदी है, उसके अलावा पहाड़ी है, पोटोहारी है, या पश्तो है, या किसी भी किस्म की आपकी ज़ुबान है, अगर आप वो ज़ुबान बोलने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप शायद मोहब्बत करने में भी किसी हद तक कंफर्टेबल ना हो। मोहब्बत तो हमेशा अपनी ही ज़ुबान में उसका मज़ा आता है, और चाहे वो मोहब्बत हो चाहे वो लड़ाई हो, जब इंसान लड़ाई भी करता है, गुस्से की हालत में भी होता है, तो वो अपनी मादरी ज़ुबान में ही लड़ाई करता है, तो उसको अजीब सी तस्कीन मिलती है कि शायद ये सही तरीका है लड़ाई करने का। मतलब हम लोग जो अपने अपने वतनों से यहाँ पर आकर आबाद हैं, अपनी अपनी ज़ुबानें बोलते हैं, जब हम लड़ाई करने की कह लीजिए स्टेज पर आते हैं, किसी से लड़ाई करना चाहते हैं या आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, तब तक हमें तसल्ली नहीं होती जब तक हम अपनी ज़ुबान में उससे आर्ग्यूमेंट ना कर लें या उनसे हम लड़ाई ना कर लें, उनसे गिला ना कर लें। ये जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है, हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर जो बोलते हैं वो अपनी ज़ुबान में लड़ाई करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। बहरहाल ज़ुबानें सारी अच्छी हैं, और जो भी ज़ुबान मोहब्बत और प्यार से बोली जाए वो सारी अच्छी ज़ुबानें हैं, सारी हमारी ज़ुबानें हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपने किस ज़ुबान से हमसे बात करनी है, आप कोई भी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि उसमें मोहब्बत ज़रूर शामिल कीजिएगा। स्टूडियो का नंबर है 01274306666। आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर 1 हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज़ रेडियो।

सियाने कहते हैं कि आपकी जो नेटवर्थ होती है, किसी भी इंसान की जो नेटवर्थ होती है, वो अक्सर देखा जाता है ना कि किसी की क्या वर्थ है, वर्थ से मुराद जो नेटवर्थ है कि उसके पास पैसे कितने हैं, वो कितना अमीर है, उसका बैंक बैलेंस क्या है। सियाने कहते हैं कि किसी भी इंसान का जो बैंक बैलेंस होता है, जो नेटवर्थ जिसकी होती है, वो उसका नेटवर्क होता है। जिस तरह आपका नेटवर्क सनराइज रेडियो है, या आपका फैमिली नेटवर्क है, और जो हमारा नेटवर्क है वो आप हैं। हमारा तो बैंक बैलेंस यही है, हमारा जो ख़जाना है वो आपकी मोहब्बतें हैं, और जो आपका ख़जाना है वो सनराइज रेडियो है, जो आप डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू सुनते हैं, और जिसमें हमारी जो मोबाइल ऐप है वो शामिल है, और इस ऐप के थ्रू आप हमें डायरेक्ट सुन सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई कह लीजिए कि थर्ड मैन या थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, ये आपका और हमारा डायरेक्ट राबते का एक सोर्स है, जिसके थ्रू आप से हम कलाम होते हैं और हम आपसे हम कलाम होते हैं। हम कलाम होने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया से के थ्रू हमें रबता हमसे रबता कर सकते हैं, और sunriseradio.fm हमारी वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको हमारे सोशल्स के तमाम लिंक्स मिल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

अच्छा जी, वक्त की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात ये होती है कि वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो गुजर ही जाता है। हालांकि वक्त की रफ्तार एक ही होती है, जब आप खुश होते हैं तो बहुत जल्दी गुजर जाता है, लेकिन अगर आप खुश नहीं होते हैं, अगर आप परेशान हैं, बेजार हैं, या आपको किसी चीज़ में नुकसान पहुंच चुका है, तो वही वक्त आपके लिए जो एक सेकंड है वो एक घंटा बन जाता है, एक घंटा एक दिन बन जाता है। तो इसी तरह जब आप किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हर लम्हा, हर पल, हर सेकंड आपके ऊपर एक पहाड़ जैसा बोझ लेकर आता है। आपको लगता है कि ये वक्त गुजर क्यों नहीं रहा। अभी हमारे शो को भी देखें, आपके साथ साथ चलते चलते हमारा वक्त कितना अच्छा और खुशगवार गुजर रहा है कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला। वक्त भी गुजर जाएगा, आप भी जहां पर जा रहे हैं, जहां जाना चाहते हैं, आप भी गुजरते गुजरते वहां पहुंच जाएंगे, और हम भी आपसे बात करते करते इस शो को अलविदा कहकर फिर अगले शो की इजाज़त लेकर आपसे हम अलविदा हो जाएंगे, आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी तो वक्त है, अभी आपने जाना कहीं नहीं है, क्योंकि आपने रहना है हमारे साथ साथ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हैं आपके साथ साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बरतानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

अच्छा जी, आपकी कॉल्स का बेहद शुक्रिया। अभी हमारे एक दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं शायद जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाता हूं। तो भाई आई विश के मेरे पास कोई ऐसा तरीका होता तो मैं आपको दिखा देता कि स्टूडियो के अंदर जो ये जो लाइंस फ्लैश कर रही हैं टम टम टम टिका टिका टिका टम टम टम, ये मैं आपको दिखा सकता लाइव। लेकिन वो भी दिखा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन देखिए, चूँकि कॉल्स की जो नंबर ऑफ कॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए और जिससे भी बात होती है वो भरपूर बात हो रही होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर बात हो, क्योंकि हम भी यहाँ हैं और आप भी यहाँ हैं। हम ना ही हमारा ये आखिरी शो है और ना ही आपकी आखिरी कॉल है। हम बातों का सिलसिला भी जारी रखेंगे और म्यूज़िक भी सुनेंगे और इसके साथ साथ मशहूरियाँ भी सुनेंगे। देखिए, ये जो मशहूरियाँ होती हैं ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। गाने तो सारे लोग एक दूसरे को डेडिकेट करते हैं, लेकिन मैं आप सबको, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको आज मशहूरियाँ डेडिकेट करूँगा। जितने भी एड्स हैं ये मैं आपको डेडिकेट करूँगा। मैं कहूँगा ज़रा इनको गौर से सुने और सुने कि ये क्या क्या चाहते हैं और क्या क्या आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आप की कॉल नहीं मिल रही तो मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ। वो मशवरा मुफ्त है और मुफ्त मशवरा देने के लिए आपको थोड़ा सा पैसे तो आप मुझे नहीं देंगे और ना ही किसी और किस्म की इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक छोटा सा काम करेंगे कि मैं आपको थोड़ी देर बाद वो मशवरा बताऊंगा, और मशवरा बहुत फ्री में है, ये जहन में रखिएगा। उसका कोई नुस्खा नहीं है, उसका मतलब कोई उसकी कीमत नहीं है। वो मशवरा मैं आपको फ्री में देने वाला हूं, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा काम करना है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं 01274306666 पर। अगर आपकी इस नंबर पर कॉल नहीं मिल रही तो मेरे पास एक बहुत मुफीद मशवरा है। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड।

देखिए हम आपको देते हैं मशवरा, और वो मशवरा ये है कि अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही फॉर सम रीजन, या मैं उठा नहीं पा रहा हूँ फॉर सम रीजन, वो रीजन यही है कि कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और बंदा मैं कल्ला ही हूँ, इंसान मैं एक हूँ, और वो कहते हैं कि एक जिंदड़ी तो दो हज़ारा, बंदा मैं अकेला हूँ और कॉल्स आप लोग बहुत ज़्यादा हैं, मैं अकेला हूँ आपकी कॉल्स लेने वाला और मैं वन बाय वन ही कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे बात हो पाए। लेकिन अगर आपसे ये मेरी बात नहीं हो पा रही तो आप एक काम कीजिएगा, आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में जाइएगा। मतलब आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि आप sunriseradio.fm पर जाइए और उसके बाद हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इनमें से किसी एक के थ्रू भी आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट यूट्यूब, लेकिन आप बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, इन पर आप हमें डीएम कर सकते हैं और वहां पर भी आपसे हमारी बात हो पाएगी। तो ये एक बहुत मुफीद किस्म का मशवरा मेरे पास था, तो मैंने कहा चलो एक तो मशवरा भी मुफ्त है और दूसरा ये काम भी मुफ्त है। मतलब इसमें आपको कॉल करने को पैसे नहीं लगेंगे, वैसे तो आजकल इतने लगते नहीं हैं, फ्री नेटवर्क है, मतलब कहीं भी आप कहीं भी लोकल नेटवर्क पर हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही फ्री है। आपने बैठकर मैसेज करना है और हमने पढ़ लेना है ऑन एयर आपका मैसेज, और आपके दिल की जो भड़ास है, भड़ास मुराद है कि जो आपकी चाहत है, वो जो डुल डुल के आ रही है हमारे पास, उसको हमने समेट कर अपने जो आपके अल्फाज हैं उनको आवाज़ देनी है और वापस आप तक पहुंचाने हैं और आपके चाहने वालों तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो। अगर आपको अभी तक मेरा नाम पता नहीं चला तो मैं आपको वो भी थोड़ी देर में बता देता हूँ। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
1: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London. With even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

राइट ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर हुआ चाहता है प्रोग्राम का एहतिताम। ओके, यहाँ पर मुलाकात जो हमारी पिछले 3 घंटे से जारी थी वो अब उसका कह लीजिए कि एहतिताम हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अंटिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखा कीजिए, अपने साथ साथ अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, और सबसे अहम, सबसे ज़रूरी अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का, अपने माँ बाप का। क्योंकि माँ बाप दुनिया में इंसान की 2 आंखों की तरह होते हैं। अगर एक आंख देखना बंद कर दे तो दूसरी आंख उसका काम देती है, लेकिन अगर दोनों आंखें देखना बंद कर दें तो इंसान की जिंदगी एक अंधेरा बन जाती है। उसको दिखाई कुछ नहीं देता, उसको सुनाई भी कुछ नहीं देता। अपनी आंखों की हिफाजत किया कीजिए, अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों, रफका और अपने अजीज़ो अकारब का ख्याल रखा कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।

wonderful. It's about time.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: मम्मी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.
3: The classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: गलियां गलियां घूमी ते पैरां नी जुतियां वी कसी गियां पर सस्ता सोना नी मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

0: hottest sounds. Let's go. On Sunrise Radio.
1: Ladies and gentlemen, party people in the place to be, all you listeners.
2: Salam namaste. Salam namaste.
3: जिससे दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा हुए
4: खान।
5: हम शरीफ क्या हुए
6: मैं वापस
5: पूरी दुनिया ही बदमाश
6: देखो मैं हूँ कहाँ
0: Always

0: अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, श्रीकाल, खुश आमदीद, वेलकम टू सनराइज रेडियो 100.6 एफएम क्रॉस द वेस्ट यॉर्कशायर. आपका होस्ट दोस्त जहां भी हाजिर है, मेरा नंबर वैसे आम ही है टिल 11 का बीरी शाम. और आप सबके नाम रंग महफिल का प्रोग्राम है. एंड इफ यू वांट टू गिव मी अ कॉल, इट्स 01274306. एंड टुडे इज अमेजिंग डे, एज यू नो टुडे इज अ वेडनेसडे इवनिंग 30th of 9 2026. द वेदर हैज बीन सच अ लवली डवी रोमांटिक मौसम है. कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, वॉट इज योर ब्यूटिफुल प्लान विद ब्यूटिफुल इवनिंग. एंड इफ यू आर ड्राइविंग, drive with the care and we out and about, make sure you stick around with the Sunday radio. And yes sir, thank you very much. aap sab doston jo bhi mere behan bhai hain, saathi hain, dost sabab hain, aziz hain hamare jo hame phone kar rahe hain, line yahan pe chamak rahi hain, damak rahi hain. And we are getting a high volume of calls and do bear with me. And thank you very much. aap sab ka bhi aane hozab sahi karne ka, duaon ka bahut bahut shukriya. And thank you very much aap ka bhi. And yes sir, definitely the Sunday radio listener choice award 2026 are coming soon, celebrating the businesses, organization, venues, artists you love. Voting will be exclusive to the listeners club members, so join free now at sunrise.radio. keep listening for more information. Now I'm going to be playing for you hit of the hour. I hope you're going to enjoy this wonderful tune, one of my favorite tune, aur isko aap enjoy kare. And do let me know what you think of this track, and keep it locked and keep dialing the number 01274306.
1: Rise Radio, hit after hit, the hits of today and the hits of tomorrow. A Sunrise Radio hit of the hour.

0: Right, that was a hit of the hour. आपने enjoy किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का. और यहाँ पे हमने करना है time check.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Right, time in the studio is 16 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on and keep it locked on with the Parviz Khan. यहाँ पे छोटी सी नन्ही मिनट ब्रेक ब्रेक के फौरन बाद आई विल मेंशन ऑल योर नेम, हेलो, हाय, किदम, व्हिच एवर इज गोना बी ऑल योर शाउट और ऑल योर डेडिकेशन, आई विल मेंशन यू इन अ बे. और यहाँ पे छोटी सी ब्रेक होगी, कीप इट लॉक्ड.
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: गलियां गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया.
4: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना.
3: चाचा केड़ा चाचा?
4: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है. सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं. ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने.
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
4: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274 488 935.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू सनराइज़। और यहाँ भी मेरा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब दोस्तों जो मुझे फ़ोन करने का, उज़्र अफ़ज़ाई करने का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा साथ दे रहे और बहुत अच्छा लगा। और हमारे मोहतरमे भाई हैं, दोस्त हैं हमारे गिदन भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अश्मित्रा जी हमारे पापी जाने ओल्ड बैडमिंटन कीन से आपने हमें याद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और आपने भी हमारा साथ दे रहे हैं और शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया फ़ोन करने का, उज़्र अफ़ज़ाई करने का। और हम भी आपके साथ ही हैं मेरे भाई, आप अकेले नहीं हैं और आपके संग संग हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। एंड देन वी आर लवली कॉलर फ्रॉम वाजिद भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमारा साथ दे रहे हैं। शबरेज़ भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हैं, आपने हमें याद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। चौधरी फ्रियाज साहब पाकिस्तान से आपने फ्लश किया है, मुझे अच्छा लगा फ़ोन करने का, उज़्र अफ़ज़ाई करने का, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का आपका भी। रेखा जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अतीका साहिबा हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नदीम मंसूर साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और हमारे मीठा जी हैं चौधरी रुखसार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आप आए और बहार आ गई है और हमें अच्छा लग रहा है कि आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। वाजिद भाई आपके और आपके दोस्तों के नाम होंगे, गीत आने वाला गीत होगा, आप जब भी आपको मौका मिले आप दोबारा फ़ोन कर सकते हैं। आपने मुझे फ़ोन किया है तो आपसे बात नहीं हुई है, और जब भी आप दोबारा हमें फ़ोन करेंगे मैं कोशिश करूँगा आपके साथ बात करूँगा, गुफ्तगू होगी। और फिलहाल ये जो गीत हो आने वाला गीत होगा हमारे चौधरी फ़रियाज़ साहब हैं जो पाकिस्तान से, यहाँ पर आपने याद किया, आने वाला गीत आपके लिए और आपके दोस्तों के नाम हैं, चौधरी आसिफ डैसर साहब हैं, परवेज़ खान हैं, महबूब लाई साहब हैं, तारक जुल्फ़ साहब हैं, जवेद मीर साहब हैं, तारक भट जी हैं, शकील साहब हैं, और चौधरी अहमद उस्मान हैं, सफ़ीउल्लाह हैं, वाजिद भाई फमहोरिस से हैं, अयूब जवान साहब हैं, चौधरी मनीर साहब चक्की वाले हैं, शरफुद्दीन हैं, ख्वाजा मोहम्मद शफीक हैं, अतीका साहब हैं, जंगीर साहब जीज बरी से हैं। और ये गीत मैं आप दोस्तों के लिए पेश करने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद और यकीन है कि आप इंजॉय करेंगे। नशीन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमें याद किया और फ़ोन करने का, उज़्र अफ़ज़ाई करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सब दोस्तों को सलाम पेश किया है और स्पेशली आपने सलाम पेश किया है हमारे किदन भाई को और अस्मित्रा जी को, और फ़जाना जी आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये गीत मैं आप सब दोस्तों के पेश करने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद और इस गीत का आप इंजॉय करेंगे, बहुत ही नयाब गीत है और इसको आपने सुनना है और पसंद भी करेंगे, और यही गीत मैं पेश करूंगा। समी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमारा साथ दे रहे हैं, पहली दफ़ा आपने याद किया और ये गीत आपके लिए भी का। इंजॉय द ट्रैक।

0: That was one of my favorite tune, और आपने enjoy किया है, और that was especially going out Gidan bhai और हमारी पापी जान के लिए था, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपने भी गाने को पसंद किया होगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमने छोटी सी ब्रेक करेंगे, और ब्रेक के फौरन बाद बहुत ही नायाब गीत आने वाला है, और वो किसके लिए थोड़ी देर के बाद हम आगाह करेंगे, और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यू आर ड्राइविंग एंड ड्राइव विद द केयर, एंड आई बिलीव एंड समबडी इज सेलिब्रेटिंग द बर्थडे टुडे, एंड हैप्पी बर्थडे यंग मैन, एंड आई होप यू हैविंग अ फैंटास्टिक रेस्ट ऑफ द इवनिंग, एंड हमारी तरफ से पूरी टीम की तरफ से आई विश यू हैप्पी हैप्पी हैप्पी बर्थडे। आई नो यू आर स्माइलिंग, आई नो यू आर लिसनिंग एज वेल, और हमें ये अच्छा लग रहा है कि आप हमारा साथ हैं, एंड आई वाज गोना प्ले अ ट्रैक ऑन फॉर यू, बट आई थिंक यू प्रोबब्ली डोंट वांट टू प्ले मी टू प्ले यू दैट ट्रैक एंड दैट पर्टिकुलर ट्रैक, बट एनीवे व्हाट आई विल डू, आई ट्राई टू प्ले दैट ट्रैक फॉर यू, ठीक है, देखते हैं क्या होता है, एंड आई एम जस्ट गोना टीज़ यू टुडे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और यहाँ पर छोटी सी ब्रेक होगी, कीप इट लॉक्ड।
1: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
2: गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935
0: Sunrise and music. Right, listeners, I'm going to play this beautiful track, which I'm going to be playing for Shabrez Bhai. ये आपके लिए होगा और आपके दोस्तों के नाम होगा, मुझे उम्मीद है यकीन के आप enjoy करेंगे। जो भी दोस्त बाबा अजीज हैं, आपके साथी हैं, वो काम वहाँ पे काम कर रहे हैं, दिल लगा के आपने काम करना है और हरकत नल बरकत होनी है, वो ये वो गीत है जो मैं पेश करने जा रहा हूँ आपके लिए होगा, और नदीम मंसूर से ये गीत आपके लिए होगा, मुझे उम्मीद है यकीन है कि आप इन्जॉय करेंगे, और यही गीत मैं पेश करूँगा हमारे रॉबिन सर। रॉबिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, न्यूयॉर्क में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है, और ये गीत मैं आपके लिए और आपकी तरफ से सब दोस्तों के लिए नाम होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप भी इन्जॉय करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे मोहतरम भाई दोस्त मीठा जी हैं रुखसार भाई, वन एंड ओनली वन रुखसार भाई, ये गीत आपके लिए और आपके दोस्तों के नाम होगा, जो भी आपके दोस्त बाबा अजीज हैं उन सब के लिए, बहुत ही नायाब गीत है, बहुत ही खूबसूरत गीत है, समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक है, एंड यू नो व्हाट, द लिरिक्स आर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, और आराम से आपने गाना सुनना है और इसके देखेंगे क्या कह रहे हैं, और व्हाट अ ब्यूटीफुल लिरिक्स एज वेल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फीलिंग, एंड आई वांट यू

still growing, growing, and we want to come to every city, every town in whole of the UK, and yes, www.sunriseradio.fm throughout the world. And that is the beauty of a Sunrise Radio. And if you can catch us, you can do so as well. और मुझे आशा भी आ रहा है क्योंकि हमारे जो एक भाई हैं उन्होंने हमें फ़ोन किया है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई फ़ोन करने का, हौसला अफजाई करने का. एंड काफ़ी दोस्त हैं ना, वो कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते हैं और क्या कहेंगे. सनराइज रेडियो इज द बेस्ट रेडियो स्टेशन, बिलीव यू नो, एंड दैट्स व्हाट इज ऑल अबाउट. एनी वे, मूविंग ऑन टू द ट्रैक, जो हमारे मैनचेस्टर में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है. और डॉक्टर मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए. मुझे उम्मीद है यकीन के इस गीत को आप इंजॉय करेंगे. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने सब दोस्तों को सलाम पेश किया. मैं कह रहा हूँ वालेकुम सलाम. और आपने चौधरी फरियाज साहब को, उनकी उनकी पूरी टीम को सलाम पेश किया. और मैं भी लाल साहब आपको भी सलाम पे आ रहा है. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और ये वो गीत में पेश करने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. बहुत ही नायाब गीत है, बहुत ही खूबसूरत गीत है. गिदन भाई और हमारे पापी जन सुमित्रा जी, आपके लिए होगा. और अतिका साहब हैं, नदीम मंसूर साहब हैं, आपके लिए भी होगा. और हमारे रुखसार भाई, ये गीत आपके लिए भी होगा. रेखा जी हैं और वाजिद भाई हैं, आप दोस्तों के लिए भी होगा. और बहुत अच्छा लगा. इफ़ यू ड्राइविंग एंड ड्राइव विद अ कार, एंड ऑल द खामोश लिसनर्स, नो फॉरगेट ऑल द चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर्स वेल. एंड इफ यू आर ड्राइविंग एंड ड्राइव विद अ कार, एंड मेक श्योर यू स्टिक अराउंड विद Sunrise Radio, and make sure you stick around with the speed here, the driving, और उसको भी आपने देखना है. और ये वो गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ, आपने इंजॉय करेंगे. Do let me know what you think of this track.

0: Right, that was a wonderful tune. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हमारे मोहतरम हैं और खाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, जवेश भाई आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हैदर भाई, अब्बास भाई, जफ़र साहब और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपको भी हम सलाम पेश करते हैं, आदाब और या अली मदद और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारा साथ दे रहे और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच फ़ोन करने का, हौसला अफजाई करने का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से भी आप सब दोस्तों के वेलकम जी खुश आमदीद और जाफर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप ये उनके साथ बैठे हुए हैं, जाफर भाई हैं और जवेद साहब हैं, हैदर हैं, अब्बास हैं और क्या कहने जी क्या कहने, और ये हैं हमारे मोहतरम के दोस्त हैं हमारे क्या कहते हैं कि मीठा भाई के, हमारे रुखसार भाई के, और रुखसार भाई वाह क्या कहने जी क्या कहने, इतनी खुशबू आ रही है जो आपने फूल भेज रहे हैं और फूलों की खुशबू आ रही है, महक आ रही है तो हमें अच्छा लग रहा है और यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक करना है विच इज वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
0: Right time in the studio is 46 minutes past the 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night. Wherever you are, keep it locked on with the Parviz Khan. यहाँ पे छोटी सी नन्ही मनी की ब्रेक होगी, ब्रेक के फौरन बाद I'm going to play for you a flashback. बहुत ही नयाब गीत होगा और आप सब सुनने वालों के लिए जो अभी मुझे ज्वाइन किया उनके लिए होगा, जो ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए होगा, जो आ चुके हैं उनके लिए, जो आने वाले हैं उनके लिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी और keep it locked with Sunrise Radio on 100.6 FM.
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London. With even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.
4: Sunrise and music.
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: Right, ladies and gentlemen, boys and girls, यहाँ भी हमारा साथ है नतीका साहब हैं, all the way from Manchester से हैं. Welcome कहेंगे, जी हाँ कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
0: कैसी थी तबीयत? ठीक ठाक से? ठीक है आपकी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है. आपकी दुआएं हैं.
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह.
1: आप भी ठीक हैं और बहुत खुशी हो रही है कि अल्लाह पाक सबको ठीक रखे.
0: आमीन आमीन आमीन.
1: और आप आए और आप कहते हैं बाहर आई, ऐसे ही है.
0: आप आए और बाहर आ गए जी.
1: आपकी ये रंगे महफिल जो सजती है आज के दिन और संडे के दिन
0: जी,
1: और सब खुश हो जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं.
0: माशाल्लाह, क्या कहने. और हम सबके लिए दुआगो हैं. और आज हमने ढोल यहाँ पे पेश नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो मोहतरम में हमारे भाई हैं, गुरुजी हैं, और उनका थोड़ा सा मसला मसाइल है, तो और उस वजह से हमने यहाँ पे ढोल नहीं पेश करें क्योंकि हम ही उनके दुख में शामिल हैं.
1: क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात है. सबको एक दूसरे के दुख में शामिल होना चाहिए
0: जी.
1: इंसानियत भी यही है कि इंसान वही है जो किसी के दुख को
0: ये होती है, ये खूबसूरती बात है,
1: समझे और उसमें शामिल हो.
0: ये खूबसूरती
1: है. आपकी सारी फैमिली का एक तरह का है, तो फैमिली में कोई अगर बीमार होता है या बात होती है तो उसमें सब शामिल होते हैं.
0: माशाल्लाह,
1: तो उनका दुख सबका दुख है, जैसे कोई भी हो. इस महफिल में जितने भी लोग आते हैं, अल्लाह पाक सब,
0: हम एक सब जो है ना एक फैमिली है, और दुख सुख जो है ना हम बांटते हैं और बांटेंगे, और ये एक खूबसूरती है फैमिली की है, और खुशी में गमी में हम एक साथी हैं जी.
1: वो हमेशा इतने अच्छे इंसान हैं.
0: माशाल्लाह,
1: बहुत अरसे से उनके साथ हमारा
0: जी तलक है जी.
1: दोनों हम इतने, जब भी कोई बात होती है दुख की, वो सबसे आगे होते हैं. अल्लाह पाक उनको सलामत रखे.
0: आमीन.
1: उनका जो भी दुख दर्द है सब अल्लाह पाक खत्म करे, और बहुत सारी दुआएं उनके लिए
0: जी.
1: तो वो आएंगे इंशाल्लाह
0: जी,
1: तो अपना बताएंगे और शामिल होंगे प्रोग्राम, मुझे पूरी उम्मीद है
0: जी.
1: तो उनको बहुत बहुत नमस्ते. तो हमारी सुमित्रा जी हैं, और आज तो आपने आप गाने घर से चूज करके लाए थे.
0: नहीं नहीं, मैं यहाँ पे बैठता हूँ, मैं सोचता हूँ कौन से गाने लगाने हैं, और मैं सोच के वही गाने पेश करता हूँ. जैसे वो कॉल्स आती हैं उस देख के, और जैसे उनकी बातें होती हैं, गुफ्तगू होती है, और वो सुन के देख के, और उसी दौरान वो गाने पेश किए जाते हैं.
1: तो ऐसे थे जो कि पुरानी यादें ताज़ा हो गई, जो कभी पहले नहीं सुने थे, आपने सुनाए.
0: वाकई ऐसे थे,
1: अच्छा लगा
0: जी,
1: खूबसूरत सॉन्ग थे
0: जी.
1: तो बहुत खूबसूरत महफिल सजाते हैं आप.
0: जी बहुत शुक्रिया,
1: सलामत रखे और
0: आपके
1: प्रोग्राम को भी. तो सबसे पहले तो हमारी सुमित्रा जी, गिजर भाई हैं, रेखा जी उनको नमस्ते, और सलीना जी हैं, सितारा जी हैं, नशीन जी हैं, शाहपरी हैं, जुलेखा जी हैं, हमारी आसिया बहन है वो भी हॉलीडे से आ गई हैं, रुखसान अफजल हैं, चौधरी फरियाज साहब हैं, इंशाल्लाह वो भी आएंगे.
0: उन्होंने फोन किया था पिछले आवर में, उन्होंने सब दोस्तों को सलाम पेश किया, और आपको भी उन्होंने सलाम पेश किया था जी.
1: बहुत बहुत सलाम, वो आए और खूबसूरत आवाज सुनाएंगे, और उनकी खूबसूरत शायरी, बहुत ही खूबसूरत शायरी होती है. नदीम मंसूर साहब हैं, उनके टप्पे माइये सुनेंगे. पापा जी हैं, शकील भाई हैं, सलीम भाई हैं, अब्दुल कयूम साहब हैं, और सजाद साहब हैं, वाजिद भाई हैं, साजिद तलवान साहब हैं, फेरमान साहब हैं, महबूब अलाही साहब हैं, तारिक भट्ट साहब हैं, राना नबी साहब हैं, शुक्रान भाई हैं, एहसान भाई हैं, और चौधरी रुखसार भाई हैं, आसिफ रियासत साहब हैं, राव अजहर हुसैन साहब हैं, और हमारे न्यूयॉर्क में रोबिनसन साहब हैं, उनको भी बहुत बहुत सलाम. वो अगर सुन रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है वो आए और अपनी आवाज सुनाए, बहुत ही खूबसूरत इंसान है, उनको बहुत बहुत सलाम. तो सबसे पहले तो कुछ अशआर है, उसके बाद सबके लिए एक सॉन्ग.
0: जी जी, गो अहेड.
1: वो ये हमारा, वैसे आपको पहले ही बता दूं, मैं जा रही हूँ हॉलीडे पे, तो ये आज मैं लास्ट प्रोग्राम में हिस्सा ले रही हूँ
0: जी जी.
1: तो इंशाल्लाह ताला सब दुआ कीजिएगा कि मैं खैरियत से जाऊंगी, खैरियत से वापस आऊँ, मुझे उम्मीद है सब दुआ करेंगे.
0: हमारी दुआ आपके साथ है जी.
1: थैंक यू, बहुत शुक्रिया. तो ये शायर है, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं,
0: बहुत खूब,
1: हमें सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं।
0: बहुत खूब।
1: किस तरह लोग चले जाते हैं उठकर चुपचाप, हम तो ये ध्यान में लाते हुए मर जाते हैं। इनके भी कत्ल का इल्जाम हमारे सर है, इनके भी कत्ल का इल्जाम हमारे सर है, जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते हैं।
0: बहुत खूब।
1: ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन, ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन, लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं।
0: बहुत खूब।
1: हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले, हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले, जो किनारों को मिलाते हुए मर जाते हैं।
0: बहुत खूब।
1: दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। वाह। दिल के वीराने को फिर से कोई गुलजार करे, कोई आए और यहाँ प्यार की बौछार करे। हम तो बैठे हैं इस आस में सदियों से यहाँ, कोई जुल्फों की तरह अजीज का सिंगार करे। आरजू है कि मोहब्बत में हदों से गुजरे, आरजू है कि मोहब्बत में हदों से गुजरे, मुझको चाहे वो जमाने से भी इनकार करे। रात डलती ही नहीं ख्वाब के साए में अभी, रात डलती ही नहीं ख्वाब के साए में अभी, जिक्र रुखसार से रोशन मेरे सरकार करे। काफिला दिल का चला है तेरी मंजिल की तरफ, काफिला दिल का चला है तेरी मंजिल की तरफ, अब कोई आए तो क्या राह में दीवार करे।
0: बहुत खूब।
1: छुप नहीं सकती मोहब्बत ये हंसी आंखों से, छुप नहीं सकती मोहब्बत ये हंसी आंखों से, अब आके मोहब्बत का कोई वार करे। दिल के वीराने को फिर से कोई गुलजार करे, कोई आए यहाँ प्यार की बौछार करे। कहते हैं कि रूखे सूखे शेरों में जरा ताजगी लाई जाए, रूखे सूखे शेरों में जरा ताजगी लाई जाए, यार की आंख की बात की जाए और जुल्फ संवारी जाए। जब से तपशे दौरा ने मिटाया है दिल का सुकून, अब लाजिम है कुछ देर मोहब्बत और बढ़ाई जाए। दुनिया के जमेलों ने बहुत लूट ली रौनक दिल की, दुनिया के जमेलों ने बहुत लूट ली रौनक दिल की, अब रस्म वफा रस्म तमन्ना फिर से नबाई जाए। वो चेहरा जो महताब को भी मात चुकाता है, वो चेहरा जो महताब को भी मात चुकाता है, उस रुख से जरा जुल्फ की चादर तो हटाई जाए। सहरा की तरह सूख गई है ये हयाते नो, बारिश की तरह अब कोई चाहत बरसाई जाए। जिस दिल में धड़कता था कभी हुस्न का एक दरिया, जिस दिल में धड़कता था कभी हुस्न का एक दरिया, इस दिल में फिर से शम्माए मोहब्बत जलाई जाए। ये एक शेर है जो कि मुझे बड़ा पसंद है
0: जी।
1: किधर चला गया? एक सेकंड।
0: कोई बात नहीं, आराम से।
1: बदला जो वक्त गहरी रफाकत बदल गई, बदला जो वक्त गहरी रफाकत बदल गई, सूरज डला तो साए की सूरत बदल गई। एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई।
0: बहुत खूब।
1: एक चेहरा जो मेरे ख्वाब सजा देता है, एक चेहरा जो मेरे ख्वाब सजा देता है, मुझको मेरे ही ख्यालों में सदा देता है। वो मेरा कौन है मालूम नहीं है लेकिन, जब भी मिलता है वो पहलू में जगा देता है।
0: बहुत खूब।
1: वो मेरा कौन है मालूम नहीं लेकिन, जब भी मिलता है वो पहलू में जगा देता है।
0: वाह।
1: मैं जो अंदर से कभी टूट के बिखरूं,
0: वाह,
1: वो मुझको थामने के लिए हाथ बढ़ा देता है।
0: वाह।
1: मुझको थामने के लिए हाथ बढ़ा देता है।
0: वाह।
1: मैं जो तन्हा कभी चुपके से भी रोना चाहूं, वो दिल के दरवाजे की जंजीर हला देता है। उसकी कुर्बत में है न जाने क्या बात, उसकी कुर्बत में है न जाने क्या बात, एक लम्हे के लिए सदियों को भुला देता है।
0: वाह।
1: एक चेहरा जो मेरी ख्वाब सजा देता है, मुझको मेरे ही ख्यालों में सजा देता है।
0: बहुत खूब,
1: तो ये तो इशार थे।
0: और
1: तो
0: पता लग रहा है कि आपके चाहने वाले प्रोग्राम सुन रहे हैं, और पीछे से आपकी जो फोन कॉल्स आ रही है और मैसेज पीछे से आ रहे हैं, और आपको यहाँ पे आवाज आ रही है कि पीछे से फोन बज रहा है आपका और मैसेज।
1: जब कभी कभी ये होता है, वो सुन रहे होते हैं तो वो बस थोड़ा सा
0: जी वो आपको कह रहे हैं कि हम सुन रहे हैं। जी
1: सुन रहे हैं
0: जी
1: ये लंदन से बेलो आ रही हैं।
0: जी
1: तो थोड़ा सा गाना है।
0: जी
1: तो सबके नाम करेंगे।
0: जी
1: हमारे रविंसन भाई, उनको बड़े पसंद होते हैं ऐसे गाने, उनके नाम करेंगे।
0: जी।
1: और सुमित्रा
0: जी
1: किधर भाई, सबके नाम करते हैं।
0: जी
1: तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा, अगर तू है सागर तो मंझदार मैं हूँ, मंझदार मैं हूँ, अगर तू है सागर तो मंझदार मैं हूँ, मंझदार मैं हूँ, तेरे दिल की कश्ती

मुझो का लेकर सहारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। भला कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के। भला कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के। बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके, बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके। छुपोगे

0: बताएंगे तूफान को, बनाएंगे तूफान को, एक दिन किनारा हो रहेगा, मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमना कदारा, तू गंगा की मौज में जमना कदारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
1: आपने तो कमाल कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना खूबसूरत शायरी भी की है और गाना भी गुनगुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और सब ने इन्जॉय भी किया और बहुत अच्छा लगा, और हमारे रबी खान ने डेफिनेटली इन्जॉय किया होगा डेफिनेटली, और हमें अच्छा लगा, इतना खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया, ये मेरा फेवरेट गीत है। बहुत बहुत शुक्रिया और आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। रब रखा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे, वाह। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब दोस्तों का। और यहाँ पर छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद हमारा साथ दे रहे हैं नदीम मंसूर साहब, हमारा साथ हैं, और वेलकम जी एन खुश आमदीद करेंगे साथ को, सब दोस्तों को जो भी मेरे बहन भाई साथी दोस्त बाबा अजीज़ हैं। और हमेशा मैं कहता हूँ कि ये आप सब हमारी फैमिली हैं, और फैमिली की हमेशा ही मैं कहता हूँ और आज भी मैं कहूँगा, यू आर ऑल माई फैमिली, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट। और यहाँ पर छोटी सी ब्रेक, कीप इट लॉक्ड।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: गलियां गलियां कुमी, ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
5: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
4: चाचा केड़ा चाचा?
5: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले, जिन्हें स्पेशल ऑफर कंडी मारी, नक्के नतीला है सिर्फ 2 पाउंड ना, कानस लाने ना 1 पाउंड, छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
4: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
5: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन, टेलीफोन 01274488935।
1: राइट, वेलकम बैक लिसनर। और यहाँ पे हमारा साथ देने हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जिनकी मैं तारीफ करना कम है, नदीम मंसूर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
6: वालेकुम सलाम
1: व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोने तो मनमोहन, की हाल चाल, ठीक है? सेहत ठीक है आपकी? अल्लाह पाक का शुक्र, करम करम, और आपकी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
6: ये सबके लिए एक गजल लिखी संजीत को।
1: जी जी जी।
6: तो कहते हैं कि क्या खरीदोगे, ये बाजार बहुत महंगा है।
1: हाय हाय, क्या कहने,
6: क्या खरीदोगे, ये बाजार बहुत महंगा है,
1: वाह।
6: प्यार की जिद न करो, प्यार बहुत महंगा
1: है। ओए होए होए होए, क्या कहने, क्या कहने।
6: ये आप, आपकी नजर सब नजर।
1: जी जी, बहुत शुक्रिया।
6: जो आ चुके हैं उनको भी सलाम, जो आने वाले हैं उनको भी सलाम।
1: जी जी, बिस्मिल्लाह।

आज कल आपका दीदार बहुत महंगा है। प्यार की

0: बहुत महंगा है, और आज तक तुमने खिलौने ही खरीदे होंगे, आज तक तुमने खिलौने ही खरीदे होंगे।
1: वाह,
0: दिल है ये दिल मेरे सरकार, बहुत महंगा है।
1: आय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने क्या।
0: आज

0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपका, और यहाँ ये आपके लिए। वाह मेरे भाई, कमाल का गीत आपने गुनगुनाया, और बड़े दिनों के बाद ये मैंने सुना है, और बड़ा ही नयाब गीत और बड़ा ही खूबसूरत आपकी आवाज़ है, और हमारा दिल बाग बाग हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, आप आए और इतना खूबसूरत गाना आपने गुनगुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और दुआओं याद रखें, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अपना ख्याल रखें, रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे मोहतरम नदीम जिन्होंने बहुत खूबसूरत आवाज़, इनकी बहुत प्यारी आवाज़ है, और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त हैं, हमारे गुरु जी हैं, वेलकम कहेंगे, जिए कहेंगे, खुश आमदी कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
2: वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास। आप सुनाए, आपका आपकी तबीयत कैसी है?
2: ठीक है,
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, हम आपके लिए दुआ गो हैं मेरे भाई, आप अकेले नहीं हैं, हम ही आपके साथी हैं।
2: थैंक यू भाई जान, वो आपको पहचानता है वो
1: साथ को? हाँ, मेरे प्रोग्राम में आते रहते थे ना। जी जी जी, हाँ जी जी जी जी, ऐसे ही है।
2: अतिका जी आए, बहुत उसकी आवाज सुन के खुशी हुई
1: जी।
2: वो मुल्क जा रहे हैं, उसको बहुत बहुत सलाम
1: जी, वालेकुम सलाम,
2: कबूल के जाए और जल्दी जल्दी वापस आ जाए
1: जी।
2: तो उधर से उसको बोलो जाके पहले बड़ी तार लगवा लो
1: जी जी, अच्छा
2: प्रॉब्लम ना हो टेलीफोन का।
1: वाह जी वाह, क्या कहने।
2: अच्छा तो सबसे पहले मैं सलाम भेजू हमारा, वो अपना नहीं

0: रॉबिन्सन
1: रॉबिन्सन जी जी जी जी जी
0: उसका अभी टेक्स है, वो बोलता है मैं सुन रहा हूँ प्रोग्राम।
1: ओके, काम भी होंगे और सुन रहे हैं। जी जी, उनको वेलकम कहते हैं जी।
0: काम भी कर रहा हूँ और सुनता हूँ।
1: वाह जी वाह, वेलकम वेलकम कहेंगे उनको जी।
0: अच्छा, तो पहले रॉबिन साहब को और शकील भाई को, जावेद मीर भाई को, मोहम्मद हनीफ भाई को, साजिद भाई, वाजिद भाई, हमारा उस्ताद चौधरी फरियाद भाई
1: जी,
0: सजाद तेहवान, इकबाल भाई है, शहीद एहसान है, पापा शफीक है, डॉक्टर मलिक है
1: जी,
0: मोहम्मद रफी साहब है, हमारा रॉबिन साहब और हमारा परवेज भाई खान
1: जी,
0: हमारी बहना समरीना खान, आशिया जी आज आ गई वापस
1: जी जी,
0: अतिका जी है, सलीना, हमारी तमा जी है, एक्रिंटन से सुन रही है
1: जी,
0: सिंह जी है, रेखा जी
1: जी,
0: पटेल है,
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: तो आज गाना ठीक नहीं है लेकिन कोशिश करता हूँ।
1: जी जी, गो हेड गो हेड। वाह,
0: एक प्यार का नगमा है।
1: वाह,
0: फौज

0: वाह जी वाह, कमाल कमाल, इतना खूबसूरत है गीत आपने गुनगुनाया, मेरा फेवरेट गीत था, और क्या गीत आपने गुनगुनाया, क्या कहने क्या कहने। बहुत खूबसूरत गीत है, और मैं ये गाना पेश करूंगा, और दो गाने हो गए, और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं दोनों गाने पेश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा, और यू नो व्हाट, वी ऑल वे विद यू, और आपने अकेले नहीं है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम जहाँ पर छोटी सी ब्रेक करेंगे, और ब्रेक के फौरन बाद हमारे पापी जान को हम सुनेंगे, उनकी भी खूबसूरत गीत को सुनेंगे, और बहुत अच्छा लगेगा, और आपने कहीं पर जाना नहीं, और यहाँ पर हमने करना है टाइम चेक।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Right, time in the studio is 46 minutes past the 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the Parviz Khan. यहाँ पे छोटी सी नन्नी मुन्नी सी ब्रेक होगी, ब्रेक के फौरन बाद हमारा साथ देने हमारे पापी जान हैं, और हमारे शहीद एहसान साहब वो भी हमारा साथ दे रहे हैं, वो भी शुक्रिया उनका भी, और उनके घर वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो प्रोग्राम सुन रहे हैं, और हमारे पापी जानी वहाँ पर प्रोग्राम सुन रही है लंदन में, वेस्ट लंदन में, और आपको भी वेलकम जी अन खुश आमदीद। मैंने भी सुना है कि आपकी भी खूबसूरत आवाज़ है, आप ही गुनगुनाया करें आए, और आप ही प्रोग्राम में शिरकत किया करें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर छोटी सी ब्रेक होगी, कीप इट लॉक्ड।
2: No, sorry, mate.
3: No, we don't have that part.
2: Have you tried down the road?
4: We can get it in, but it won't be for a few days.
5: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobileovervan.
6: गलियां घुमी ते पैरां दी जुत्तियां वी कसी गईयां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
7: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
6: चाचा केड़ा चाचा?
7: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्नाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंडना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
6: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
7: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
8: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
9: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?
0: और यहाँ पे हम गाना सुनेंगे, और हमारी पापी का जान की आवाज़ में, और बहुत खूबसूरत गीत ओल्डी गोल्डी सुनाएंगे हमें। और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु पापी जान।
10: हेलो जी भैया,
0: हाउ आर यू पापी जान, आप ठीक है? से ठीक है आपकी? माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आप आए और बहुत अच्छा लगा, आपने हमें कीमती वक्त दे रहे। जी गो हैड, ऑल योर्स।
10: चलो मैं सबको पहले सलाम बोल दूं।
0: जी जी गो हेड गो हेड।
10: शकील भाई बल्ली वाला है हमारा, जावेद भैया है, मोहम्मद रफी भैया, साजिद भैया है हमारा, वाजिद भैया वो बीमार है, वो इसको भी खुदा जल्दी जल्दी ठीक कर दे, मैं दुआ है।
0: आमीन।
10: चलिए चौधरी फरियाद भैया भी, इसको भी वो भी ठीक हो जाएगा।
0: जी आमीन।
10: आया नहीं है अभी भैया?
0: फिलहाल आए नहीं है, पिछले आवर में मैंने फोन किया था, उन्होंने सलाम पेश किया सब दोस्तों के लिए। जी
10: फिर सज्जाद पहलवान भैया है, इकबाल भैया है, पापा शफीक भैया, फिर मोहम्मद रफी भैया, रोबिन साहब जो हमें यूके से,
0: न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क से जी,
10: हाँ इसको भी मैं हमारा स्पेशल सलाम।
0: जी वालेकुम सलाम।
10: अच्छा जी, आशिया जी है, अतिका जी है, सलीना है, शरफ तमी जी, समा जी भी
0: जी,
10: रेखा जी, हमीदा जी, सितारा जी, जितने लोग
0: आते हैं सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। और शहीद एहसान साहब जी,
10: इसको भी बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम सलाम।
10: लंदन वाला भैया गाना गाता है, इसको भी
0: लगेगा, बड़ा अच्छा गाना गुनगुना जी,
10: बहुत
0: गाना। जी
10: चलो मैं मेरा देर के लिए आप सब दुआ करना।
0: जी जी हमारी दुआ आप उनके साथ है,
10: बहुत अच्छा इंसान है।
0: जी जी
10: संदेश की सारा दिन किया उधर, लेकिन जल्दी जल्दी खुदा इसको ठीक कर दे।
0: आमीन।
10: आप सब दुआ करना
0: जी। बहुत अच्छे हैं वो मेरे प्रोग्राम में आते रहते हैं। पहले उन्होंने एक दो दफा उन्होंने फोन किया था मेरे प्रोग्राम में, गाना भी गुनगुनाते। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा प्यारा भाई है हमारा जी।
10: चलो मैं एक गाना गा लेती हूँ।
0: जी जी।
10: जिंदगी देने वाले तेरे दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाली रात्रि कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं, जख्म ऐसा दिया है कि बढ़ता नहीं। रात वीरान है, दिल परेशान है, गम का सामान है, जैसे जादू कोई कर गया। जिंदगी देने वाली सुन, तेरी दुनिया से दिल बन गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाली सुन। एक मिनट भैया,
0: आराम से आराम से। You're listening to Sunrise Radio on 100.6 FM और हमारा साथ दे रहे हैं हमारे पापी जान हैं, सुमित्रा जी हैं, और उनका हम शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारा साथ दे रहे हैं, वो गाना गुनगुना रहे हैं। तो हम थोड़ी देर के बाद उनके साथ भी हम कलाम होंगे जी।
10: मैं नहीं कह सकती थी।
0: कोई बात नहीं भाभी जान, यू नो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन माय दुआज आप
10: दी। मैं स्टार्टिंग कर लेती हूं, कोशिश करती हूं।
0: जी जी जी, गो अहेड गो अहेड।
10: जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहां जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन, रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं, जख्म ऐसा दिया है कि पड़ता नहीं। रात वीरान है, दिल परेशान है, गम का सामान है, इसे जादू कोई कर गया। जिंदगी देने वाली सुन, देखा तूने मुझसे खुशी छीन ली, जिंदा रखा मगर जिंदगी छीन ली, कर दिया दिल का खून, चुप कहाँ तक रहूं, साफ क्यों न कहूं, तो खुशी से मेरी जल गया। जिंदगी देने वाली सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाली सुन। थैंक यू भैया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपने गाना गुनगुनाया, और बहुत ही खूबसूरत गाना था, और बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या फरमाया आपने?
10: गाना गाते गाते फील हो जाता है।
0: कोई बात नहीं भाभी जान, यू टेक इट इजी, और हमारी दुआ आपके साथ है, और आपने इतना खूबसूरत गीत गुनगुनाया। आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशन एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, और आपके साथ है हमारे, हम आपके साथ है।
10: वो मेरा दिल सबसे सबसे प्यारा मेरा
0: हाय, ये दुख होता है ना जब कोई बंदा बीमार हो जाए, आपके जाने वाला, आपकी जो फैमिली के मेम्बरान कोई भी बीमार हो जाए तो बड़ा ही दुख होता है. और देखिए, आई नो द फीलिंग एज वेल, हमारी दुआ आपके साथ है. आई कैन अंडरस्टैंड द इमोशन, आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग. तो आपने आराम से करें और उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए दुआ करें, ये बहुत ज़रूरी है. दुआएँ जो है ना वो काम आएंगी. जी सब खुदा के, बाकी इसमें कोई शक नहीं है, खुदा के हक में, हाथ में सब कुछ है. और उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए दुआएँ करें और हम भी दुआएँ करेंगे, अल्लाह उनको बेहतर करेगा इंशाल्लाह जल्द. और आपने घबरा, आपने घबराना नहीं है बाबी जान, ठीक है ना. इसमें आई नो यू गोइंग थ्रू,
10: सबको हमारा सलाम.
0: जी वालेकुम सलाम.
10: अच्छी तरह खुदा हमेशा इसको
0: जी
10: अपने को होली देने जा रही है
0: जी.
10: हम इसको खुश करेंगे
0: जी,
10: तो खुशी खुशी जाए, खुशी खुशी वापस आ जाए
0: जी. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए. और हमारी तरफ से ये है आपके लिए. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. और हमें अच्छा लगा. और ये थे हमारे भाभी जान, ऑल द वे फ्रॉम सुमित्रा जी हैं, ऑल द वे फ्रॉम मिल्टन किन्स से हमारा साथ देने, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी. और यहाँ भी हमारे शहजादे आ गए हैं, हमारे बहुत ही प्यारे हैं, और उनसे भी हम कलाम होंगे थोड़ी देर के बाद, उनसे भी हम गाना सुनेंगे. और फिलहाल हम क्या करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
11: वालेकुम सलाम सर, कैसे आप?
0: मैं तो ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास. और आप सुनाए, आपकी कैसी तबीयत है मेरे भाई की? और हमें सुना है कि आप कोई गाना लेके आए हैं, और मुझे खुशी हुई है कि हमारी भाभी जान भी प्रोग्राम सुन रही हैं.
11: जी बिल्कुल.
0: वो कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं. तो मैंने ये सुना है कि उनकी भी आवाज़ बड़ी प्यारी आवाज़ है, बहुत खूबसूरत आवाज़ उनकी.
11: He does have very nice voice, yes.
0: तो उनको हम दोनों का हम मौका देंगे जो नेक्स्ट आवर में, आप थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी दो तीन मिनट रह गए, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपको लेके जाऊं आवाज के दोष में और आपको गाना सुने, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप थोड़े रुक जाएं, तो इट्स नॉट नाइस. तो आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे, तो नेक्स्ट आवर में आई विल टेक यू ऑन स्ट्रेट वे, ठीक है? आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, आप आए. तो भाभी जान को भी कहें कि वो रेडी हो जाए, तैयार हो जाए कोई गाना गुनगुनाने के लिए, ठीक है ना? उनको
11: कहें
0: ट्राई करें, उनको भी कहें कि वो आए. और हमें अच्छा लगे क्योंकि हमने सुना है कि किसी ने मुझे बताया कि उनकी भी बहुत खूबसूरत आवाज़ है, उनकी भी बड़ी प्यारी आवाज़ है गाने. वेरी नाइस वॉइस, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. और हमें अच्छा लगे आप हमारा साथ दे रहे हैं. और ये थे हमारे शहीद एहसान साहब, ऑल द वे फ्रॉम लंदन से हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी. और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे मोहतरम में हमारे भाई हैं, और उनको भी हम वेलकम कहेंगे, जी कहेंगे, सत बिस्मिल्ला कहेंगे. यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं चौधरी फिराज साहब. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू.
12: जी बिस्मिल्लाह करा. वालेकुम सलाम.
0: बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह. मैंने कहा कि शायद मैंने आगाह कर दूं दोस्तों को जो आपके चाहने वाले हैं, कि उनको पता लगे गया होगा कि आप आ गए हैं और वो सुन रहे हैं और वो खुशी मना रहे हैं कि आप ही हमारा साथ दे रहे हैं. तो ये हमें सुन के बहुत अच्छा लगा. और आपको भी हम कहेंगे थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, तो नेक्स्ट आवर में मैं आपको लेके जाऊँगा और हवा के दोष में, और देखते हैं कि दुनिया में किस किस कोने में फिरेंगे आप, ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का. और हम आपके लिए दुआगो हैं कि आपने इस वक्त टाइम निकाला और माशाल्लाह आपने फ़ोन किया, और आपके लिए भी तबीयत के लिए हम दुआगो हैं. और जो आपके चाहने वाले हैं और फर्दन फर्दन आपको सलाम पेश करें, सब सुनने वाले आपको सलाम पेश करें, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप ही आएँ. बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से, ये आपके लिए. और आपने यहाँ भी इंतज़ार करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपका भी दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और यहाँ पे हमने क्या करना है कि क्योंकि अभी दो मिनट रह गए, एक मिनट दो मिनट रह गए, तो उसमें हमने क्या करना है कि उसमें हमने क्या करना है कि आपको इंफॉर्मेशन देनी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है बहुत ज़रूरी है. और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी, और यू लिसनिंग टू सनराइज रेडियो ऑन DAB प्लस ऑन लीज, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकशायर, ब्लैकबर्न, बर्ले, डार्विन, नेल्सन, एकिंगटन और मिल्टन कीन में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है, और नो फॉरगेट इन वेस्ट लंदन में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी कि आपने हमें टाइम दे रहे, कीमती वक्त दे रहे, क्योंकि टाइम जो है ना, बिलीव करने का, इट्स नॉट ईजी. और किसी के पास टाइम नहीं है, एवरीबॉडी इज़ बिजी बिजी बिजी विद लाइफ है, और ज़िंदगी के ये मेले हैं. और जब ये एक दूसरे के साथ मुलाकात करें, अच्छी तरह मुलाकात करें, खूबसूरत अंदाज से. और यहाँ पे हमने ब्रेक करनी है, न्यूज़ ब्रेक.
13: broadcasting to the Asian community 24 hours a day. This is Sunrise Radio. On the hour, every hour. This is Sunrise Radio Network News.
14: Centre at 10. Broadcaster Dame Esther Ranson has died aged 86. Her family say she was the most wonderful mother and cherished grandmother. The former host of shows such as VATS Life established charities to help young and older people, including Childline. In recent years, she'd been a campaigner for legalising assisted dying after her lung cancer diagnosis in 2023.
15: I've joined Dignitas. If the next scan says nothing's working, I might buzz off to Zurich. But, you know, it puts my family and friends in a difficult position because they would want to go with me. And that means that the police might prosecute them. So we've got to do something.
14: Passengers arrived home in Israel after one pilot stabbed another and tried to crash a plane bound for Tel Aviv. The aircraft dropped 14,000 feet in a matter of seconds during the altercation. The Prime Minister says there's strong indications Iran played a part in a suspected terror plot near RAF Fairford. Five men arrested near the Gloucestershire Air Base on Sunday have since been released under investigation. The UK and France have scrapped their so-called one-in-one-out migrant scheme. It was aimed at reducing the number of people crossing the Channel in small boats, but is no longer processing new cases. Tyson Fury and Anthony Joshua shared a surprisingly respectful first face-to-face as the countdown began to their long-awaited showdown in Cardiff on December the 11th. The heavyweight rivals traded jokes at the launch press conference, with Fury even suggesting the pair share a pint after the fight. Joshua says he's proud to be involved in British boxing's biggest ever event.
16: We're here now, right? 10 years in the making, you say? We're here now, honestly, it's a blessing. Thank you to his team, his family, for keeping him on the straight and narrow. You know, for all those years, 18 years a professional, and I've been keeping my head down, plugging away, and it had to happen at some stage, and there's no better time than now.
14: And former Manchester City boss Pep Guardiola's told fans he's here more than ever after the club was found guilty of breaking financial rules. City insist they'll appeal and deny any wrongdoing. That's the latest. I'm Chris Milligan.
17: Sunrise Radio Network News.
18: Fresh concerns have been raised over proposed changes to night flight rules at Leeds Bradford Airport. The airport wants to introduce a system which limits overall aircraft noise rather than the number of flights, and change nighttime hours to between 11:30 and just before 6 in the morning. Airport bosses say the plans would maintain the existing noise footprint and encourage the use of quieter aircraft. But campaign group Galba says the changes could allow substantially more night flights, while Horsforth Town Council has also raised concerns over noise, infrastructure, and the impact on nearby residents. Four Keithley shops will be able to continue selling alcohol until February, while they appeal decisions to revoke their licences. Bradford Council stripped the businesses of their licences in March, after a hearing was told raids had uncovered large quantities of counterfeit tobacco. The four stores are European Food and Keithley Mini Market on North Street and Keithley Pound Plus and Whistler on Cavendish Street. The council told Bradford Magistrates Court it believes the businesses are linked and alleged criminal activity has continued. Their appeals are due to be heard on the 3rd of February. Plans to transform Manchester's Piccadilly Gardens have been approved, with the main work due to begin in November. The redevelopment will introduce more lawns, trees and planting, new seating and a larger children's playground. The existing fountains will be removed to create a space for family-friendly events, while lighting, CCTV and sightlines will also be improved. Manchester City Council says it received no objections to the planning application, meaning it could be approved without going before the planning committee. The council expects the transformed Piccadilly Gardens to be ready for the public next year. This is Sunrise Radio News with Alex Shawson. Three men have been jailed for a combined 25 years for their roles in what prosecutors describe as the UK's largest ever illegal phone smuggling network. Amir Kadikel, Ismat Miakel, and Mansour Mohammed are believed to have helped export around 40,000 stolen phones from Britain to China between 2024 and 2025. The operation was uncovered after hundreds of phones wrapped in foil were discovered in a shipment at Heathrow Airport. Most of the devices were iPhones, with police seizing phones worth more than £5 million during their investigation. Bollywood actor Tahir Raj Bhasin says he isn't chasing fame. He wants to be remembered for his performances. The Mardani star says choosing varied roles across different genres has been central to building the kind of acting career he wants. That was Sunrise Radio News.

0: Alright, that was the hit of the hour. आपने enjoy किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. और यहाँ पे हमने करना है time check.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Right, time in the studio is 9:10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on, keep it locked on with the Parviz Khan. और यहाँ भी हमारा साथ देने सईद एहसान है, all the way from London से हमारा साथ देने. उनको कहेंगे वेलकम, कहेंगे जी हां, कहेंगे खुश आमदीद, कहेंगे सत बिस्मिल्ला, कहेंगे यहाँ पे. और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु सुपरस्टार.
2: Waalaikum salam,
0: sir. Sir, how are you? Are you good?
2: I'm fine.
0: MashaAllah, MashaAllah. ये हमें सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप तैयार हैं, आपके दोस्त अहबाब प्रोग्राम सुन रहे हैं. और ये खुशी की बात है कि हमारी पापी जान प्रोग्राम सुन रही है, ये बड़ी खुशी की बात. इसका मतलब है कि सुबह को आपको पराठे मिल जाएंगे. पराठे और चाय वगैरह मिलेगी और ताजी ताजी सुबह सवेरे. क्या है और बहुत अच्छा लगा. और हमारी तरफ से ये आपके लिए सर.
2: Thank you, sir. बहुत बहुत शुक्रिया.
0: You are welcome. You deserve it. You deserve it. Believe it or not, you do deserve that. जी.
2: Oh, it's so lovely. So lovely to be on your show.
0: Thank you very much. Thank you very much.
2: I've got a beautiful song for your beautiful audience.
0: Wow. क्या क्या.
2: It's a love song. I hope it's a love song.
0: Definitely. आपकी आवाज में हो और वो जो खूबसूरत शब्द निकलेंगे और खूबसूरत क्या बात है, क्या बात है. जी.
2: No problem. Here we go.
0: All yours.

पूछिए क्या हो जाता है, दुखती है वह रुकती है जुबान, माथे पे कसीना आ

इरफान में तू है मौजूद।

बतलाता है जब दिल से दिल टकराता है, मत पूछिए क्या हो जाता है। मुखड़ा न छुपायो हाथ।

0: रुकती है दुल्हन, माथे पे पसीना आता है जब दिल से दिल टकराता है।
1: वाह वाह वाह, क्या कहने मेरे भाई, क्या कहने क्या कहने, इतना खूबसूरत गीत, ओए होए होए,
2: अमेजिंग सॉन्ग, अमेजिंग, यू नो,
1: बहुत खूबसूरत गीत था और बहुत ही प्यारा गीत था। वाह क्या कहने, वाह जबरदस्त, आपने मेमोरी को रिफ्रेश कर दिया, बड़ा ही अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए।
2: मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों की भी अच्छा कुछ चुन चुन के गाना गाऊंगा।
1: नहीं नहीं, बहुत ही कमाल का गीत था, बड़ा ही प्यारा गीत है, बड़े दिनों के बाद मैंने गाना सुना। यू नो I love the choice of your music, माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत आपकी choice है और जो music आप गुनगुना रहे और जो आपकी आवाज है beautiful, beautiful, जितनी भी मैं तारीफ करूँ कम है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: आप लोगों की support मुझे अच्छी सी लगती है, it's very important for me.
1: Everybody, you know what, everybody loves you, माशाल्लाह, everybody, माशाल्लाह, give you salam to you और welcome कहते हैं हमेशा ही जब भी प्रोग्राम में शिक्र करते हैं, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगता है और बहुत बहुत शुक्रिया और हमें अच्छा लगा और हमारी भाभी जान क्या कह रही है, गाना गुनगुनाएगी या किसी और रोज
2: ऊपर चलेगी।
1: इंशाल्लाह, और हमारी तरफ से ये आपके लिए दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखे और दुआओं में याद रखे, ऑल विल लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू ऑलवेज, बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे बहुत ही प्यारे भाई और सईद एहसान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी खूबसूरत इनकी आवाज़ है और यहाँ छोटे से ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद हमारा साथ देने, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया इन सब का भी, थैंक यू वेरी मच।
3: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
4: Looking for a quality home to rent?
5: Whether you need a 1, 2 or 3 bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
4: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
6: The greatest station, radio station in the world, Sunrise Radio.
1: Right, welcome back here, listener. You're listening to Radio 103.2 FM and 100.6 FM across West Yorkshire. और यहाँ पे हमारा साथ देने हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, जितनी की मैं तारीफ करूँ कम है, और यहाँ पे हमारा साथ देने चौधरी फरियाज साहब हैं, ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान से हैं, और वेलकम जी आने खुश आमदीद, बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
7: जी
1: वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह करा, जी करा, जी आना खुश आमदीद, अपनी सुना से ठीक है जितनी भी मैं तारीफ करना काम है जी जी बिस्मिल्लाह करा और राना नवी साहब को सलाम देने से बड़े प्यार मोहब्बत बड़े खलूस न
7: जी वाले काम सलाम बिस्मिल्लाह
1: और बाकी भी कॉलेज सब ने सलाम दिया जी जी
7: जी बस तो सर जितने भी संगी असें सलाम जो देने नहीं पता तो सर असा देखो उन्होंने सलाम जरूर पहचाने हो
1: जी जी
7: असा भी सबाना शुक्र शुक्र गुजार हां के
1: जी
7: के हमेशा ये संगी प्राप्त की बड़ी मोहब्बत से बड़े खुलूस नाल याद कर रहे हैं
1: जी जी
7: के हम सलाम दुआ करा
1: जी जी बिस्मिल्लाह
7: बिस्मिल्लाह करा टीका बाजी ने नशीन जी ने सिमी जी ने गुजालाबाद जी ने उमर कुसुम जी ने सीमा जी साकरी जी रेखा जी सारा जी भाभी साहिबा ने गिदड़ भाई
1: जी
7: फरजाना जी साइमा जी और सोनिया जी,
1: जी
7: और सोनम जी सबा नो मेरा बहुत बहुत सलाम
1: वालेकुम सलाम
7: बहुत बहुत शुक्रिया सबा ने याद आवे ना बेहद शुक्रिया
1: जी
7: मोहतरम अमर भाई ने
1: जी
7: और महबूब राय साहब ने दस्तर साहब ने अजय सलीम साहब ने चौधरी मनीर सिंह चक्की वाले ने
1: जी
7: किर साहब ने हीरा भाई ने वाजिद भाई ने अयुब चौहान साहब ने जावेद मीर भाई अब्दुल किजम भाई
1: जी
7: शहीद राणा साहब ने, जनाब तारक बट साहब ने, चौधरी मुजफ्फर साहब ने, चौधरी आसफ रियासत साहब ने
1: जी,
7: और जनाब डाटो चौधरी मुबारक साहब ने, चौधरी रुखसार साहब ने, अहम खान साहब ने, जय मंसूर साहब, राजा वकास साहब ने
1: जी,
7: राजा जुल्कर नैन साहब ने, और जफर अली रोज साहब
1: जी,
7: महमूद साहब, राजा शोएब साहब, और मनीर हुसैन
1: जी,
7: एलिफैक्स वाले, और भी जितने संगीत साथी
1: जी,
7: भाई ममदा नीक जितने भी संगीत साथी,
1: वाह क्या बहुत क्या
7: सबा ना बहुत बहुत शुक्रिया,
1: आपका भी शुक्रिया।
7: बिस्मिल्लाह खरान लिखने ने के खिल जाए चमन वीरान दिल दा,
1: हाय हाय क्या कहने,
7: खिल जाए चमन वीरान दिल दा, आ जावे बहार सावा अंदर,
1: वाह
7: चोला उठदा नित जदाई वाला, कदों पासा दीदार निगावा अंदर,
1: वाह वाह वाह वाह क्या कहने,
7: तुमा रोजा रसूल दियां जालियां नो,
1: आहा माशाल्लाह,
7: तुमा रोजा रसूल दियां जालियां नो, रेंदी जिस जो एको चावा अंदर, मिट जाए दिल दी हसरत, रहीम साईयां हो जाए कब्र मदीने दियां रावा अंदर,
1: माशाल्लाह सुभानअल्लाह,
7: ये मजाज ने रंग
1: जी जी,
7: कितने ने के लू लू मेरे अग लाई जिसने,
1: हाय हाय क्या कहने,
7: लू लू मेरे अग लाई जिसने, नजर आमदा ने ओले हो बैठा,
1: वाह
7: करे तरस ओदे बिच अजरान चरोखना में, जिंद जान उतो आत्मो तो ही बैठा,
1: माशाल्लाह क्या कहने,
7: ओदे बिच अजरान चरोखना में, जिंद जान उतो आत्मो तो ही बैठा, दसा क्या जे कितना दिल मेरा,
1: वाह
7: दसा क्या जे कितना दिल मेरा, उसी बिच जुदाई ने रो बैठा,
1: वाह
7: बसदा आज कल तन तनहा थी, पीछे याद सब कुछ खो बैठा,
1: खो बैठा, आ हा हा क्या कहने,
7: आखिया सोचा यार नो मिला सबब केरे,
1: आहा
7: सोचा यार नो मिला सबब केरे, लखा हीले तदबीरा जे कर बैठा,
1: वाह
7: करे तरस ते आप मिल जावे, मैं ते मल पक्का ओदा दर बैठा,
1: वाह वाह वाह क्या कहने,
7: आखिया बुआ खोलदा नहीं मुआ बोलदा नहीं, सर विच ओदे कदमा तर बैठा, खाली खोल अंसे बुत रुत बाजो, और मोरा इश्क दा पक के मर बैठा,
1: वाह वाह वाह वाह,
7: ਅਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨੇ ਜਿੰਦ ਅਸੀਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨੇ ਜਿੰਦ ਅਸੀਰ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਉਹ ਯਾਰ ਬੋਲੇ, ਉੱਤੇ ਮੁਖ ਚੋ ਪਾ ਕੇ ਨਕਾਬ ਰੱਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕੁੰਡ ਉਤਾਰ ਬੋਲੇ,
1: ਵਾਹ
7: ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ, ਸੁਬਾ ਸ਼ਾਮ ਨਿਤ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਬੋਲੇ, ਤੀਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਭ ਹੋ ਜਾਣ ਅਨਸੀ, ਹੱਸ ਕੇ ਯਾਰ ਸੋਹਣਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲੇ,
1: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ,
7: ਆਖਿਆ ਤਿੱਖੇ ਦਰਦ ਤਾਈ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ, ਗੀਤ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਗਾਮਣਾ ਵਾ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਰ ਸਾਈ ਆਵੇ ਤਰਸ ਕਿਧਰੇ, ਰੋਜ਼ ਸਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਵਣਾ ਵਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਰਦਨਾਕ ਇਸ ਸਾਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਛੇਤੀ ਲੱਗੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਵਣਾ ਵਾ, ਅਣਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਸਕੂਨ ਤੇ ਪਾਵਣਾ ਵਾ,
1: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ,
7: ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਮਾਲ ਤੇ ਚਾਲ ਬਾਂਕੀ, ਆਏ ਦਿਲ ਦੀਵਾਨਾ ਬਣਾ ਗਈਏ, ऐसे मार फराक दी यार दी दर्दी जिंदगी वो बन कजा गई,
1: वाह चौधरी साहब,
7: पिछम होया ते बारू बेशक जिंदा, पिछम होया ते बारू बेशक जिंदा, कतल कर जो ओदी अदा गई है, कुर्दी मार के भी अंती नई सूरत ओ जेड़ी रूह दे विच समा गई है,
1: वाह वाह वाह वाह,
7: क्या देख दिल ते दिल खरीदने ले,
1: वाह
7: देख दिल दिल खरीदने ले, अति दर्द प्यार दी पा लईए, ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ, ਜੇ ਤਫੀਕ ਤੇ ਪੰਡ ਉਠਾ ਲਈਏ,
1: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ,
7: ਸੱਚ ਕਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਯਾਰ ਪੱਲੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਈਏ,
1: ਵਾਹ
7: ਅਨਸੀ ਨਿਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇ ਖਾਏ ਵਾਰਾ,
1: ਵਾਹ ਵਾਹ
7: ਬਣਾ ਲਈਏ,
1: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿਆ,
7: ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਕਿਸ ਦੇ,
1: ਬਹੁਤ ਖੂਬ
7: ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਕ ਸਾਰੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਸੁਖਨ ਸੁਖਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕਿਸ ਦੇ, ਅਲਪੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਦਿਲ ਜਾਣੀ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਅਬਾਲ ਕਿਸ ਦੇ,
1: ਬਹੁਤ ਖੂਬ
7: ਆਪਣੀ ਖੇਰਾ ਕਿਹਾ ਦਵਾ ਇਸ਼ਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਦਵਾ ਇਸ਼ਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਨਭਾਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਪੱਲੇ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਰਹਿੰਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖੋਂ ਕੱਖ ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਗੱਲ
1: ਬਣਦੀ,
7: ਔਖਾ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਔਖਾ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਖ ਉਡਾਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਅਨਸੀ ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮਾਂ ਅਨਸੀ ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮਾਂ ਉਹ ਮੌਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ
1: ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ
7: ਵੇਸ ਭਾਈ
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ
7: ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਲਾ
1: ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ ਚੋਣਾ ਚੋਣਾ ਹੋਈ ਕਹੋ ਜੇ ਅਲੀ ਹਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਜੇ ਆਖੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਫਰਬਾਜ਼ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਅਲੀ ਹਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ
7: ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹਿ ਸਹਿ ਵਿਛੋੜੇ ਨੀ ਮਾਰ ਲੋਕੋ
1: ਆਹਾ
7: ਸਹਿ ਸਹਿ ਵਿਛੋੜੇ ਨੀ ਮਾਰ ਲੋਕੋ ਅਸਾਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਅਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਕੁਝ ਤੇ ਹੱਥ ਕਰ ਗਿਆ ਦਿਲਦਾਰ ਆਪਣਾ
1: ਵਾਹ
7: ਕੁਝ ਤੇ ਹੱਥ ਕਰ ਗਿਆ ਦਿਲਦਾਰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਦਿੱਤੀ
1: ਵਾਹ
7: ਉਹ ਕੇ ਮਦੋਸ਼ ਮਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਰ ਅਕੀਰ ਦਿੱਤੀ ਪਨ ਕਫਨ ਵਿੱਚ ਕਰਸਾਂ ਅਲੀ ਹਮਜ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਮ ਨੀ ਸਜਣਾ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ
1: ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ
7: ਅਸਦਾ ਵਸਦਾ ਸਾਂ ਚੰਗਾ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ
1: ਵਾਹ
7: ਨਾ ਸੀ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਖਬਰ ਸਾਂ ਤੋਰ ਦਿਲ ਦੇ ਗਿਆ ਅਰਮਾਨ ਕੋਈ
1: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ
7: ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਐਸੀ ਜੁੜਦਾ ਵਕਤੀ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕੇ ਐਸਾ ਵਸ ਕੇ ਉਜਰੇ ਅਲੀ ਹਮਜ਼ਾ
1: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ
7: ਐਸਾ ਵਸ ਕੇ ਉਜਰੇ ਅਲੀ ਹਮਜ਼ਾ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ
1: ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ
7: ਅੱਛਾ ਇਧਰ ਬੋਲ ਅਣ ਬੋਲ ਬੋਲ ਜੇ ਇਧਰ ਬੋਲ ਅਨ ਬੋਲ ਜੇ ਬੋਲ ਗੇ ਬੋਲੇ ਉਧਰ ਰਕੀਬਾਂ ਉਧਰ ਰਕੀਬਾਂ ਸੰਗ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੁਫਤਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਇਧਰ ਬੋਲ ਅਣ ਬੋਲ ਜੇ ਗੇ ਬੋਲੇ ਉਧਰ ਰਕੀਬਾਂ ਸੰਗ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੁਫਤਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਇਧਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰ ਸਵਾ ਕੀਤਾ ਉਧਰ ਹਰ ਪਲ ਕਿੜੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ
1: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ
7: ਉਧਰ ਪਗੜੇ ਨਾ ਦਿਲ ਜ਼ਮੀਰ ਕੰਬਿਆ ਉਧਰ ਪਗੜੇ ਨਾ ਦਿਲ ਜ਼ਮੀਰ ਕੰਬਿਆ ਇਧਰ ਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਗਦੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਧਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਉਧਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਰੇ ਨੀ ਅਲੀ ਹਮਜ਼ਾ ਇਧਰ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜਰਨੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ
1: अपना ख्याल रखें खेद ना ख्याल रखें मेरे भाई और हमारी दुआ हमेशा आपके साथ है बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे शादाबाद रखे और अल्लाह सोने वाला रब रखा और हमारी तरफ से ये बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे ब्रेक के फौरन बाद हमारा साथ दे रहे हैं जो हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त जिनका इंतजार था वो आ गए और छा गए और यहाँ पे वेलकम जी यानी खुश आमदीद कहेंगे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक कीप इट लॉक्ड
8: No, sorry, mate.
9: No, we don't have that part.
8: Have you tried down the road?
10: We can get it in, but it won't be for a few days.
11: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving. With 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobileovervan.
12: छापा कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है जे तुसा पुराना सोना बेचना है बहुत चंगे रेट पर देने
13: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
12: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935
1: राइट वेलकम बैक और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मुर्शिद आ गए और छा गए और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
14: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
1: माशाल्लाह कैसी थी वीदे मेरे भाई की
14: ये अल्लाह की मेहरबानी शुक्र है आपकी दुआएं आप सुनाए
1: अल्लाह पाक का शुक्र शुक्र करम करम करम और बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारा साथ दे और आपको हमारे भाई दोस्त पिछले आवर में फ़ोन किया था उन्होंने आपको सलाम पेश किया है और बहुत अच्छा लगा ये थे हमारे डॉक्टर मलिक साहब और बहुत अच्छा लगा उन्होंने हमारा प्रोग्राम सुनने तो वो आपने उन्होंने आपको सलाम पेश किया जी
14: उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
14: और भी तमाम सुनने वाले हैं उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
14: साहबा से सुमित्रा बहन है सारा रजा अल्लाह जी हैं रुखसाना साहबा कितन भाई हैं
1: जी
14: चौधरी रुखसार साहब है, चौधरी फरियाद साहब है
15: जी,
14: चौधरी मुजफ्फर साहब है, महबूबुल्लाही
15: जी,
14: वाजिद भाई है, डॉक्टर मलिक राय है, हजर हसैन साहब है
15: जी,
14: शबीर भाई है, हजर सेलक सर, और भी जितने सुनने वाले सबको मेहतर से अस्सलाम वालेकुम।
15: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
14: एक छोटी सी गजल लाया हूं आपके लिए।
15: जी जी अरशाद।
14: ये खालिद कोटी इनका नाम है, लिखने वाले
15: जी जी।
14: वो कहते हैं मोहब्बत में तो जानो दिल का नजराना भी होता है।
15: हाँ हाँ हाँ, क्या कहने।
14: मोहब्बत में तो जानो दिल का नजराना भी होता है, कफे अफसोस को मल मल के पछताना भी होता
15: है। हाय हाय, मकरर जी मकरर, दोबारा दोबारा जी, वाह वाह वाह वाह।
14: मोहब्बत में तो जानो दिल का नजराना भी होता है,
15: वाह,
14: कफे अफसोस को मल मल के पछताना भी
15: होता है। वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने जी।
14: तुझे पाकर ये जाना इश्क में सारी खुशी पाई।
15: हाय हाय।
14: तुझे पाकर ये जाना इश्क में सारी खुशी पाई।
15: वाह।
14: तुझे खोकर ये समझा इसमें गम खाना भी होता है।
15: हाय हाय वाह वाह, मकरर जी मकरर, बहुत खूब, वाह।
14: तुझे पाकर ये जाना इश्क में सारी खुशी पाई।
15: वाह।
14: तुझे खोकर ये समझा इसमें गम खाना भी होता
15: है। वाह वाह वाह वाह, क्या कहने।
14: न फूलों में है रहनाई, न तारों में है जेबाई।
15: वाह।
14: बड़ा कैफ शाम गम का अफसाना भी होता है।
15: बहुत खूब बहुत खूब, वाह।
14: मोहब्बत में जब इजहारे मोहब्बत से हो पाबंदी। मोहब्बत में जब इजहारे मोहब्बत से हो पाबंदी, तो दिल की बात को आंखों से समझाना भी होता है।
15: बहुत खूब बहुत खूब, वाह।
14: ये तेरी बेरुखी तेरा तगाफुल बेकली तेरी। ये तेरी बेरुखी तेरा तगाफुल बेकली तेरी, इन्हीं अशकाल में दिल को बहलाना भी होता
15: है। वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
14: आपकी शेर कहते हैं
15: जी जी अरशाद।
14: शबाब हुसन पे जेबा नहीं है नाज है खालिद।
15: वाह।
14: शबाब हुसन पे जेबा नहीं है नाज है खालिद, कली जब फूल बनती है तो मुरझाना भी होता है।
15: मकरर जी मकरर, बहुत खूब बहुत खूब, वाह वाह।
14: शबाब हुसन पे जेबा नहीं है नाज है खालिद,
15: वाह,
14: कली जब फूल बनती है होता है।
15: बहुत ही कमाल का, बहुत ही खूबसूरत अंदाज, वाह जी वाह, क्या कहने, वाह जी वाह, बहुत अच्छा लगा आप आए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए, और एक और हो जाए, आपके पास तो टाइम तो है जी। जी
14: फर मीन का नाम है
15: जी जी जी।
14: वो कहते हैं अभी खामोश हैं शोलों का अंदाजा नहीं होता।
15: वाह क्या कहने।
14: अभी खामोश हैं शोलों का अंदाजा
15: नहीं होता, वाह।
14: मेरी बस्ती में हंगामों का अंदाजा नहीं होता,
15: वाह वाह क्या कहने, वाह वाह।
14: जिधर महसूस हो खुशबू,
15: वाह,
14: उसी जानब बढ़े जाओ।
15: वाह।
14: जिधर महसूस हो खुशबू उसी जानब बढ़े जाओ, अंधेरी रात में रस्तों का अंदाजा नहीं होता,
15: क्या कहने मेरे भाई का, क्या कहने, बहुत खूब
14: शुक्रिया।
15: वाह।
14: जो सदियों की कसक लेकर गुजर जाते हैं दुनिया से, मुवर्रिख को भी उन लम्हों का अंदाजा
15: नहीं होता, क्या कहने मेरे भाई का, क्या कहने, वाह।
14: क्या तुझे शेर है,
15: बड़ी खूबसूरत है, क्या आप कहने जी।
14: ये राबर है कि राजन है, मसीहा है कि कातिल है।
15: आई हाय वाह।
14: ये राबर हैं कि राजन हैं, मसीहा हैं कि कातिल हैं, हमें अपने नुमाइंदों का अंदाजा नहीं होता।
15: हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने मेरे भाई का, वाह।
14: नजर हो लाख गहरी और बसीरत आशना फिर भी। नजर हो लाख गहरी और बसीरत आशना फिर भी, निकाबों में कभी चेहरों का अंदाजा
15: नहीं होता। वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, कमाल कर कमाल।
14: जमीन पर आओ और फिर देखो हमारी अहमियत क्या है।
15: हाय हाय वाह वाह वाह वाह।
14: जमीन पर आओ और फिर देखो हमारी अहमियत
15: क्या है। वाह वाह।
14: गंदी से कभी जर्रों का अंदाजा
15: नहीं होता, क्या कहने, वाह
14: शुक्रिया। वफाओं के तसलसल से भी अक्सर टूट जाते हैं। वफाओं के तसलसल से भी अक्सर टूट जाते हैं।
15: वाह।
14: मोहब्बत के हसीन रिश्तों का अंदाजा
15: नहीं होता। आए हाय हाय हाय, क्या कहने, बहुत खूब, वाह।
14: उतर जाते हैं रूह दिल में कितनी वसअतें लेकर।
15: वाह,
14: गजल के दिल रुबा ले जो का अंदाजा
15: नहीं होता। वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
14: यह तो आप शेर कहते हैं
15: जी अरशाद।
14: सलीके से सजाना आईनों को वरना है रज़्मे, सलीके से सजाना आईनों को वरना है रज़्मे, गलत

0: हमारे बहुत ही खूबसूरत है और हमारे मुर्शिद और उनके मुर्शिद का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दो जितने इनकी मैं तारीफ करूँ कम है और शुक्रान भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तो फर्स्ट ना, आप सुनाए आपकी ठीक ठाक है? फिर ठीक है आपकी? अल्लाह खैर ही करे। मेरे ख्याल है मेरे भाई को लाइन मिली डिस्कनेक्ट हुई है और आपको मिली है और बहुत अच्छा लगा। जी
1: सर जी, पहले तो एक शेर है छोटा सा, छोटा सा तो नहीं है माशाल्लाह
0: जी,
1: बड़ा प्यारा शेर है। कहते हैं कहा था ना
0: जी,
1: कहा था ना जो सोते हुए मत छोड़ के जाना,
0: हाय हाय
1: मुझे बेशक जगा देना,
0: हाय हाय
1: बता देना,
0: बता देना
1: तुम्हें रास्ता बदलना है, मेरी हद से गुजरना है,
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय। क्या कहने मेरे भाई का,
1: तो तुम्हें किस बात का डर था?
0: आहा
1: मुझे बेशक जगा देते बता देते,
0: आहा
1: मैं तुमको देख ही लेता,
0: वाह
1: कम अज कम यूं तो ना होता,
0: हाय हाय हाय।
1: मेरे साथी ये हकीकत है, तेरे बाद मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा,
0: वाह क्या कहने,
1: मगर अब मैं सोने से डरता हूँ,
0: हाँ हाँ हाँ सोने से डरता हूँ, सोने से डरता हूँ, खोने से डरता हूँ, हाय हाय हाय हाय हाय। क्या कहने मेरे भाई, क्या कहने, वाह वाह वाह वाह मेरे भाई, आजकल बहुत रोमांटिक हो रही है, बहुत ही रोमांटिक।
1: कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि कमी गांव होती है, जिधर इससे खड़े होके ना तीर मारते हैं लोगों को।
0: जी जी जी जी जी,
1: वो कहते हैं कि खा के तीर जो देखा कमी गांव की तरफ,
0: हाँ
1: अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई,
0: वाह वाह क्या कहने, क्या कहने क्या तीर लगाई आपने,
1: तीर लग गया,
0: तीर लग गया, तीर लग गया, जकपॉट जकपॉट लग गया, वाह जी वाह वाह, 180 डिग्री
1: जी। गाना सर जी आपके लिए के खता जब होके
0: वाह
1: हाले दिल
0: आहा
1: किसी से कहे किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, अमीर तू है तो अमीर तू है तो इतना

0: वाह।
1: किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, हर एक पल में, हर एक पल में तुझे याद किया

कोई खता तो नहीं, मुझे भी प्यार है, मुझे भी प्यार है तुझसे।

0: नहीं, बहुत शुक्रिया
1: सर जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लाडले, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और दुआ में हमें याद रखें। क्या आवाज पाई और क्या गीत आपने गुनगुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से ये आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।

0: और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, और जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है। और बड़ा ही अच्छा लगता है जब ये आप प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, और ये हमारे मीठा जी हैं, और बड़े प्यार के साथ, बड़े अदब अदाब के साथ, बड़े हलूस के साथ हमारा साथ दे रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चौधरी रुखसार भाई हैं ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, या अली मदद।
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، چشم روشن دل ماشا با کمال لاجواب با بہت کار با ذوق با شوق بہت نفیس بہت لطیف اور میرے چیمپئن بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور،
1: सर चैंपियन यार सुनाओ कैसे हो, किधर गया
0: मैं तो यहाँ पे मेरे भाई, हमने आपको बताया यहाँ पे जब भी कोई ढूंढना हो ना तो वेनेसडे और संडे शाम की वक्त क्या हाल है। और
1: सर मैंने किस चैनल पर, किस रेडियो पर आपके लॉन नहीं करवाए
0: वो कराए होंगे, और जिन्हें सुनने वाले सुन लिया होगा। और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा ही हमें याद करते हैं बड़ी अच्छी तरह, और बड़ा ही अच्छा लगता है। और जिन्होंने सुन लिया होगा तो उन्होंने उनको पता लग गया होगा क्या हाल और उन पता नहीं कर, जी
1: मैं कहता हूं कि आजकल हम जो वो कहते नहीं है कि सानू नहर वाले पुल पे बुला के
0: मैं पहुंच गया हूँ मेरे भाई, मैं पहुंच गया हूँ।
1: नहीं वैसे यार वो मैडम नूर जान को अल्लाह जन्नत में जगह दे, उसका गाना बहुत मशहूर है। आप गलत ना, आप पता है कि आप उधर पहुंच जाते हैं।
0: नहीं नहीं नहीं, वो जो गाना है ना जो बड़ा मशहूर हुआ है बड़े चंद दिनों के पहले, चंद रोज पहले, बड़ा ही मशहूर गाना हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत गाना है। और जिनको लग गया वो लग गया, क्या हाल वो हो गया।
1: और कहने ना इश्क बुले नुनु चावे यार,
0: आए बुले चावे, वाह वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने।
1: चैंपियन हो गए यार तो नचना पैंदा
0: है, नचना पैंदा क्या कहने मेरे भाई का। और अपनी ठीक है आपकी?
1: मैं तो कहता हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी कॉल ड्रॉप हुई है, तो वो हमारे मोहतरम, हमारे बहुत ही प्यारे और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत वाशुकुरान बजाए थे उन्होंने, क्या खूबसूरत गीत सुना।
0: शुक्र है, शुक्र है कि ये आपने कह दिया, मैंने नहीं कहा कि, मैंने कहा कि यार ये कि आप जा रहे आ रहे जा रहे, तो मैंने कहा कि उनको लाइन मिली है तो वो खुश हो गए, वो हमारा शहजादा है, हमारा लाडला है माशाल्लाह।
1: नहीं अल्लाह ताला उनकी आवाज में और ज्यादा, क्योंकि माशाल्लाह यानी कि अतीका बाजी से लेकर यकीन करें वो हमारे गिद्दन भाई हैं, और उनकी वाइफ मोहतरमा हमारे लिए नेहायत काबिल इज्जत काबिल रिस्पेक्ट है, उनका नाम तो मुझे नहीं याद है।
0: सुमित्रा जी,
1: जी सुमित्रा बहन है वो, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, उनसे लेकर और माशाल्लाह नदीम मंसूर आए थे माशाल्लाह, और ही बहुत माशाल्लाह सिंगर आपके पास, क्या क्या हीरे हैं आप। ये मुझे ये बताएं कि ये जो गोर आप लेकर आते हैं किस सदर से निकालते हैं
0: ये मेरे भाई, ये मैं राज बता दूं फर्क में क्या हो क्या मेरे भाई ये राज है ना, ये पंच पाक का राज है
1: माशाल्लाह। बेशक मैं यकीन करें कि जब मैं आपके स्टेटस देखता हूँ ना तो ओए हो यकीन करके दिल से आपके लिए दुआ निकलती है, मैं दस्ते दुआ बुलंद करता हूँ। मैंने कहता हूँ कि अल्लाह मेरे चैंपियन भाई को लंबी जिंदगी ता फरमाए, और अल्लाह ताला मेरा चैंपियन भाई धमाला डालता रहे
0: माशाल्लाह। हमारा दिन रात सुबह शाम मेरे भाई वो अली अली होती है माशाल्लाह, और क्या कहेंगे मुझे जो ना वो जोश है ना वो जोश, क्या कहेंगे।
1: चलो आप सच्चे पाइतन ही है।
0: अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ मेरे भाई, अल्लाह ताला इसको कबूल करे, अल्लाह ताला कबूल करे। और नचना पड़ना है क्या हाल है, और उनके दीवाने हो तो नचना ना क्या कहने की वो क्या कहने उनकी जो मैं क्या कहूंगा। अभी टाइम कम है प्रोग्राम का, ये ना हो कि हम बातें करते रहें तो आप हमें गाना सुना रहे थे वो सने नहरे वाले पुल पे बुला के तो वो सुना दे सुना दे
1: वो आप सुनाएंगे या मैं?
0: ना ना ना ना, मैं अलाउड नहीं गाना यहाँ पे, मैं नहीं गा सकता हूँ, मैं अलाउड भी नहीं हूँ। और ये ना हो कि मैं गाना गाऊंगा तो मुझे फाइन हो जाएगा, तो मैं फाइन जो है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं फाइन भी पे करूँ क्या हाल।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह सर, चलो अल्लाह ताला सभी को सलाम। मुझे पता है कि वो टाइम भी बहुत कम है, और मेरे पास जो हस्ती आने वाली है,
0: वो हमारे भाई हैं सुपरस्टार हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, उनकी आवाज़ आप सुनेंगे ना तो कहेंगे वाकई मेरे भाई ये ईरा है। और वो हमारे साजिद भाई हैं फ्रॉम शफीर से माशाल्लाह, वो याद करते हैं हमें तो उनकी आवाज़, ये मेरे बहुत ही अच्छे सिंगर हैं माशाल्लाह, बड़ी प्यारी आवाज़ इनकी।
1: बड़ी हस्तियाँ आ गई हैं तो फिर मेरे जैसे
0: नहीं, आप अपना अपना अपना अपना मकम मौकफ अपना पूरा करें ना मेरे भाई, आपने आए हमारे इस दरबार पे आए हैं तो खाली हाथ ना जाए ना मेरे भाई।
1: मेरी हाजिरी, मेरा मकसद सिर्फ फकत मेरी हाजिरी और मेरे जितने माशाल्लाह।
0: चलो चंद चंद चंद बोल ही कह दें, कोई खैर है वो हाजिरी पूरा कर लेना, हाजिरी बगाजरी।
1: सबसे पहले तो माशाल्लाह आपकी पूरी टीम को जनाब मोहब्बत भरा।
0: जी जी रुखसार रुखसार भाई, भाई जान क्या हुआ है, खामोश क्यों हो गए मेरे भाई? रुखसार भाई आपकी लाइन की खामोश हो गई, क्या वजह? यहाँ पे मेरी की तरफ से नहीं, ये आपकी तरफ से पता नहीं, मेरे आपने मेरे ख्याल में म्यूट लगा दिए वहाँ पे। रुखसार भाई आपके म्यूट लग गया वहाँ पे, आपके आपकी तरफ से है, यहाँ पे तो मेरा सिस्टम ठीक है और आप दोबारा फ़ोन करेंगे तो मैं आपको दोबारा मैं लेके जाऊंगा, पता नहीं क्या वजह हुई है और यहाँ पे आपकी जो ना यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही है। तो यहाँ पे वैसे लाइव है, मेरे ख्याल में या तो आपकी फ़ोन कॉल आ गई वहाँ पर या आपका कोई मसला हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर मैं होल्ड करता हूँ आपको और यहाँ पर हमने करना है टाइम चेक।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: Time in the studio is 46 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night. Wherever you are, keep it locked on with Parviz Khan. Yeah, I'm a choice to break it and keep it locked with Parviz Khan.
3: Sunrise and music. Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
4: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तेहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतिमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर कॉल करें।
0: और यहाँ पे हमारा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रुखसार भाई आपने वहां पे होल्ड किया हुआ है, वहां पे आपने वहाँ पे होल्ड किया हुआ है, मेरे ख्याल में कोई आपकी तरफ से कोई मसला हो गया। कोई बात नहीं, चलो आप जब भी मुझे फ़ोन करेंगे दोबारा। और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम बहुत ही खूबसूरत भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
1: जी बिस्मिल्लाह।
0: ओ मेरे ख्याल में आपने होल्ड कर दिया, मुझे होल्ड लगा दिया मेरे भाई। ओए होए, चलो आप शुरू करें। जी बिस्मिल्लाह, आवाज़ के दोष में।
1: जी बिस्मिल्लाह, ठीक है, सॉरी मैं क्योंकि ज्यादा टाइम हो
0: गया। नहीं, आपकी तरफ से वो पता क्या हुआ है, आपने मेरे ख्याल गलती से होल्ड कर दिए वहाँ पे, वो म्यूजिक आ रही थी यहाँ पे मेरे साथ। जी जी,
1: हो सकता है क्योंकि छोटे छोटे से तालिब इल्म से अक्सर गलतियाँ हो जाती
0: है। नहीं, कोई कोई कोई कोई बात नहीं। जी जी जी जी जी बिस्मिल्लाह करें।
1: तो सर जहाँ से
0: जी जी क्यों नहीं की, जी जी ऑल योर्स।
1: क्या लिखता है, जख्म इतने तो लगे हों के बदन चूर हो लगे।
0: हाँ क्या कह रहे,
1: जख्म इतने तो लगे हों के बदन चूर लगे।
0: वाह,
1: आदमी इश्क में ऐसा हो के मंसूर लगे।
0: हाय हाय क्या कहने, मंसूर लगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी।
1: वो अजल से तेरी आवाज को तरसे हुए हम।
0: वाह,
1: को कोई भी नजर आए हमें कोई तूर लगे।
0: हाय हाय हाय हाय क्या कहने,
1: बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया।
0: वाह,
1: तेरे यूं गात लगाने पे तुझे दाद मगर, तेरे सब तीर निशाने से बहुत दूर लगे।
0: वाह क्या कह रहे,
1: इनकसारी का लबादा भी ना ओढ़े वो शख्स।
0: बहुत खूब,
1: उसे कहियो के अगर है तो वो मगरूर लगे।
0: आए, आए, आए, आए, क्या कहने क्या कहने मेरे, क्या कहने। जी
1: मैं किसी तौर समर बार नहीं हो पाया, मैं किसी तौर समर बार नहीं हो पाया, वरना मुझ पेड़ की शाखों पे कई बूर लगे।
0: हाय हाय हाय हाय क्या कहने रुखसार भाई।
1: आखिरी शेर जनाब आपकी और माशाल्लाह तमाम रोशन समातों की नजर करना चाहता हूँ।
0: जी जी,
1: इश्क में वसल पहाड़ों की तरह होता है। इश्क में वसल पहाड़ों की तरह होता है, कोई जितना चले इसकी तरफ दूर लगे।
0: क्या कहने
1: सर, बहुत शुक्रिया। ये
0: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, और आप आए और बहार आ गई, कसम से बड़ा मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शार जी
1: मैं आप मेरी दुआओं में हमेशा रहते हैं, और इस उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि आप भी मुझे अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे
0: हमेशा ही मेरे भाई। अल्लाह खुश, आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे मोहतरम, हमारे भाई। हमारे मोहतरम रुखसार भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और यहाँ भी हमारे साथ दे रहे हैं सुपरस्टार, वन एंड ओनली वन, द लेजेंड, द सुपरस्टार साजिद भाई हैं, ऑल द वे फ्रॉम शेफील्ड से हैं, और जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
5: वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त, कैसे हो परवेज भाई?
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज तो हमारी ईद होगी मेरे भाई की, आवाज़ सुन रहा हूँ और बड़ा ही अच्छा लग रहा है मेरे भाई का, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दे दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े दिनों के बाद मेरे भाई कहाँ पे गैर हाजिर है आजकल?
5: जी, बस आपकी लाइन कभी कभी नहीं मिलती, और माशाल्लाह अच्छी बात है कि आप बिजी शो जा रहे हैं।
0: माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सर,
5: काम की वजह से ना।
0: जी जी,
5: लेकिन मैं सुनता रहता हूँ।
0: माशाल्लाह, क्या कहने
5: हमेशा। तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ बोल रफी साहब।
0: जी जी जी जी, क्यों नहीं, गो अहेड।
5: सबको सलाम मेरी तरफ से।
0: जी जी, वालेकुम सलाम। जी जी जी,
6: मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार के निशानी। मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खिजा का, वो बहार तूने दी है, मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से, तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें,

0: उठी है ये घटाओं की जवानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से।
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय, वाह क्या कहने मेरे भाई का, क्या कहने, बड़ा ही खूबसूरत है गाना आपने गुनगुनाया, वेरी नाइस। हाय हाय, और एक गाना और हो जाए क्योंकि आप आए और हमें अच्छा लग रहा है, वो जो आपका फेवरेट गीत है जो गुलाबी आंखें, हाय हाय क्या कहने, वाह
0: थोड़ा मैं गुनगुना।
1: जी जी जी जी, गो अहेड।
0: गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, जरा भी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहां, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूं मैं दिल रुबा, बुरा है जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया।
1: बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, और हम इंतजार करेंगे और मैं इंतजार करूंगा आपका, और संडे की रोज, और आपने भूलना नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। और अच्छा लगता है जब जी जी जी जी बिस्मिल्लाह,
0: जाते जाते दो चंद बोल, लता जी की सालगिरह थी कुछ दिन पहले,
1: जी जी ऐसे ही था, ऐसे ही
0: याद है बस
1: जी।
0: ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का,
1: क्या कहने ना।

कुछ ऐसे सपने बसने लगे आँखों में, कुछ ऐसे सपने कोई बुला

0: दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। थैंक यू, शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हमारे रॉबिन ने सारे और ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क से, उन्होंने बड़ी ही तारीफ की है और प्रोग्राम की तारीफ की और आपकी तारीफ की है, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने फ्लश किया और मुझे पता लगे कि वो हमें याद करें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखें और हम इंतजार करेंगे संडे के रोज, ठीक है ना, बहुत बहुत शुक्रिया, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे मोहतरम हमारे भाई सुपरस्टार साजिद फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम शेफील्ड से, उन्होंने हमें याद किया और बड़ा ही खूबसूरत अंदाज, इनका बड़ा ही प्यारा अंदाज है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टू वन एंड ओनली वन द सुपरस्टार साजिद भाई ऑल द वे फ्रॉम शेफील्ड से, और जो आने वाला जो प्रोग्राम होगा और वो आएंगे इंशाल्लाह और भी गीत गुनगुनाएंगे तो हमें अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल दोज ब्यूटीफुल कॉलर्स जिन्होंने हमें याद किया और मेरा साथ दिया, एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, मैं किस किस का मैं शुक्रिया अदा करूँ, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी आए बिटवीन आवर्स 8, 9, 9 and 10, 10 and 11, और हमें अच्छा लगा कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द फैमिली जो हमें याद करते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, हम हैं राय प्यार के फिल्म में के चलते चलते ऑन संडे इवनिंग बिटवीन आवर्स 8 and 11 वेयर वी गोना बी हैविंग अ पार्टी इन द स्टूडियो एज ऑलवेज, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज ऑन शब खैर, एंड आई होप यू हैव अ फैंटास्टिक rest of the evening as well, and that is the beauty of the Sunday radio, and keep it locked with the Parviz Khan Wednesday and Sunday evening between hours of 8 and 11. Allah Hafiz and Shabakhir.